मित्र मन मत्ता अंग में बुरा पलाना पिछाने प्राणी आगे पंथ करारा पूरा सदगुर कभू ना सेवया सिर ठांडे जम जंदारा धर्म राय जाब पकड़ बवरे।

को जो जुग जुग सद पीढ़ी गुरु चलन दी जो जुग पीढ़ी चले सदगुर की जिनी गुरमुख नाम ते आया हर पुरख ना कभी बिनसते जावे नित देवे चढ़े सुवाया नानक संत संत हर एको जप हर हर नाम सुगंधी हर राम राम मेरे बाबला फिर मिलतन वेल वधंदी श्री राग महला पंजवां शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन प्यारिया जीव मित्रा गोविंद नाम सुमाले मन प्यारे जी मित्रा हर निर्गह तेरे नाले संग सगाई हर नाम त्याई

शांत प्रेम ठगोरी पाए रिहाए गोविंद मन मोया जियो संतन कै प्रसाद आगाध कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दो सब जोया भगत लखेण तरवस पए मन सरसुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सा मिट गए थकी मंगल हो गाया यश पुजाया बौड़ ना माया होया कर गए लीने नानक प्रप्यारे संसार सागर नहीं पोया डकना साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना पागम थागे से नानक हरंग मान दो।

ब्रह्म विचारया जन्म सवारया पूर्ण कृपा तब करी कर गै लीने हर जसो दीने जोन ना तावे नै मरी सतगुरदयाल कृपाल भेटत हरे काम क्रोध लोभ मारिया कथन ना जाए अकथ स्वामी।

उत्तम नामक जिन श्रेया सब कोय जियो फारजी सवे प्रतपालदा कर कर मैया सोए तो हर सदा त्याई है तिस बिन अवर ना कोए जो मोह माया चित लाए दे छे छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम त्याया हर अंत सकाई होए मैं हर बिन अवर न कोय हर गुर सुननाई पाइये बनजारिया मित्रा वडपाग प्राप्त होए हर हाओ संत जना बिन पाइया हर किने न पाया ना हो विच होमे कर्म।

मीना गए आपे आपे ही आप जाल तू आपे जाल बताएंदा आपे विच से बाल तू आपे कमल अलिप्त है सह हथा विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमक कड़ी कर ख्याल हर तुद्धों बार किश नहीं गुरसबदी वेख निहाल सलोक महला तीजा हुक्म न जाने बहुता रोवे अंदर धोखा नींद न सोवे जे तन खसम चले रजाई दर कर सोभा महल बुलाई नानक करमी ए मत पाई गुर प्रसादी सच समाई महला तीजा मनमुख नाम हुणिया रंग कसुंबा देख ना पुल इसका रंग दिन थोड़िया छोछा इसदा मुल दूजे लगे पचमुए मूर्ख अंध गवार बिष्टा अंदर कीड़ से पए पते वार हो वार नानक नाम रते से रंगोले गुर के सह सुपाए भगती रंग न उतरे सहजे रहे सुमाए पौड़ी सिष्ट उपाई सब तुद आपे रिजक संभाया एक वल छल करके खाम दे मोह कूड़ सत तिनी ढाया तुद आपे पावे सो करे तुद ओते कम ओ लाया एक ना सच बुझायोन तिना अतुट पंडार देवाया हर चेत खाए तिना सफल है अचेता हथ तड़ाया सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित बेद वखाण है माया मोह सवाए दूजे पाए हा नाम सारिया मन मूर्ख मिले सजाए जिन जियो पिंड दिता इस कबहू ना चेत जो दिंदा रिजक समाहे जम का फहा गलो ना कटिए फिर आवे जाए मानमुख किशु न सूझे अंधले पूर्व लिखिया कमाए पूरे भाग सतगुर मिले सुखदाता नाम से मन आए सुख माने सुख पहनना सुखे सुख विखाए नानक सो नाओ मनो नाम सारी है जित दर सच्चे सोभा पाए महला तीजा सतगुर से सुख पाया सच नाम गुणतास गुरमती आ पछाणिया राम नाम परगास सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास जियो पिंड सब तिसका सिफत करे अरदास सचे शब्द सालाना सुखे सुख निवास जब तब संजम मने माहे बिन नावे त्रिग जीवास गुरमती नाओ पाईए मनमुख मोहे विनास ज्यो पावे त्यों राख तू नानक तेरा दास पौड़ी सब को तेरा तू सब सदा तू सब नारास तब तू दे पासो मंग दे नित कर अरदास जिस तू दे ते सब कुछ मिले एक ना दूर है पास सब बाजो थाओ को नाही जिस पासो मंगिए मन वेखो को निरजास सब तुदे नू सालहां दे दर गुरमुखा नू परगास सलोक महला तीजा पंडित पढ़ पढ़ उच्चा कूकदा माया मोहे प्यार अंतर ब्रह्म न चीनई मन मूर्ख दा वार दूजे पाए जगत प्रबोध दा ना बूझे विचार बिरथा जन्म गवाया मर जम्मे वारो वार महला तीजा जिन्नी सतगुर सेवया तिनी नाओ पाया बूझो कर विचार सदा सांत सुख मन वसे चूके कूक पुकार आपे नू आप खाए मन निर्मल होवे गुर सबदी विचार नानक सबदरते से मुक्त है हर जियो हेत प्यार पौड़ी हर की सेवा सफल है गुरमुख पावे ताए जिस हर पावे तिस गुर मिले सो हर नाम त्याए गुर सबदी हर पाईए हर पार लंघाए मन हठ किने ना पायो पुछो वेदा जाए नानक हर की सेवा सो करे जिस लए हर लाए सलोक महला तीजा नानक सो सूरावरी आम जिन विच्चों दुष्ट अहंकरण मारिया गुरमुख नाम सलाहे जन्म सवारिया आप हुआ सदा मुक्त सब कुल निस्तारिया सोन सच द्वार नाम प्यारिया मनमुख मरे अहंकार मरण मगाड़िया सबो वरते हुक्म क्या करे विचारिया आपो दूजे लग खसम वसारिया नानक बिन नावे सब दुख सुख वसारिया महला तीजा गुरपूरे हर नाम दिड़ाया तिन विचो परम चुकाया राम नाम हर कीर्त गाई कर चानन माग दिखाया होमे मार एक लिव लागी अंतर नाम साया गुरमती जम जोए न साकै
ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ।

जननी जानत सुध बड़ा होत है, इतना को ना जाने, जे दिन दिन अवध कटत है, मोर मोर कर अटक लागत तार, पेगत ही जामरा हसे, ऐसा तय जग परमलाया, कैसे बूझे जा मोया गए माया रखाओ, कैद कबीर शोर बिखिया रस, इत संगत नेचो मरना, रमैया जपो प्राणी, अंत जीवन बाणी, एन वेद पवसागर तरना, जत भावे तां लागे भाओ, परम पुलाव चों जाए, उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे, इत संगत ना ही मरना, हुं पछाण तां खसमें मिलना, रहाओ दूजा श्री राग त्रिलोचन का, माया मोह मन अग लड़ा प्राणी, जरा मरण पो मिसर गया, कुटंब देख विसे कमला ज्यों, पर कर जोग है कपट नरा, दूड़ा आयोह जमह तना, दिन आगलड़े में रहन न जाए, कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीठला ले भाड़ी वलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाव, अनक अनक भोगराज बिसरे प्राणी, संसार सागर पे अमर भया, माया मूठा चेत सनाही, जन्म गवायो आलसिया, बिगम कोर पंथ चलना प्राणी, रवस तय ना प्रवेशन, माया मोह तब बिसर गया, जा तजियले संसारं, आज मेरे मन प्रगट पया है, पेखियले तमराओ, तय करदल करन महाबली, तिन आगलड़े में रहन न जाए, जे को मुंह उपदेश करत है, ता वण त्रिण रतड़ा नारायण, ऐ जी तू आपे सबके जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया, श्री राग भगत कबीर जियो का, अचरज एक सुनो रे पंडिया, आप किस कहन न जाई, छोड़ नर गणक दर्बजन मोह, तिर पौन मेख लीलाई, राजा राम अनहद किंगुरी बाजे, जाकी दुष्ट नाद लिव लागे रखाओ, पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलश एक पाया, जमे तार चोया तो निर्मल, रसमय रसन चोआया, ये जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजया, तीन पवन में एक को जोगी, कहो कमन है राजा, ऐसे गण प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग रत्ता, और दुनिया परम पुलानी, मन राम रसायन माता।

तेरा जियो पिंड सबरास तुम्हारी तेरा जोर गोपाला जियो सदा सदा तू है सुखदाई निवन लागा तेरी पाई तारक मावा जित पावा जा तू दे दयाला जियो प्रभ तुम ते लेना तू मेरा गहना जो तू दे सोई सुख सहना जिथे रखे पै कुंत साई तू सबना के प्रतपाला जियो सिमर सिमर नांग सो पाया आड़ पैर तेरे गुण गाया सगल मनोरथ पूर्ण होए कदे न होए दुखाला जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म प्रमेघ बिठाया जल थल महियल दहत वरसाया सांद पई बूझी सब तृष्णा अंध पया सब ठाई जियो सुखदाता दुख पंजन सारा आपे बख्श करे जी सारा अपने कीते नूं आप प्रतपाले।

मन तन निर्मल निर्मल नाम ध्यावण आ जीवन मरना सब तु दे ताई जिस बगसे ते दे वड्याई नानक नाम ध्याय सदा तू जमन मरण सवारण आ माझ महला तीजा मेरा प्रभु निर्मल अगम पारा बिन तकड़ी तोले संसारा गुरमुख होवे सोई बूझे गुण कै गुणी समावण आ हौ वारी जीव वारी हर का नाम मन वसावण आ जो सच लागे से अनदन जागे दर सच्चे सोभा पावण आ रहाओ आ सुने ते आपे वेखै जिसनु नदर करे सोई जन लेखै आपे लाए लय सो लागे गुरमुख सच कमावण आ जिस आप भुलाए सो किथे खत पाए पूर्व लिखिया सो मिटना ना जाए जिन सतगुर मिलिया से बड़भागी पूरे कर्म मिलावण आ कई अड़े अन दिन सुती तंत विसारी अवगुण मुती अन दिन सदा फिरे बिल लांदी बिन तिर नींद ना पावण आ कई अड़े सुखदाता जाता होमे मार गुर शब्द पछाता सेज सुहावी सदा प्रेरावे सच सिगार बनावण आ लख 84 जी उपाय जिसनु नदर करे।

अंतर वसर गए नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रभ कौ सेम दे तिन कै सद बलिहार संत अराधन ससद सबना का बगसिंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दित्ती अन जिंद गुरसबदी आराधी है जपिए निर्मल मंत कीमत कहन ना जाई है परमेसर बेअंत जिस मन वसे नारायण सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मिले स्वामी कंत नानक जी वे जप हरी दोग सबे ही हंत दिन रहन जिस नाम विसरे सो हरिया हो वे जंत सर्व कला प्रापूर्ण मन ने माणी थाओ हर ओढ़ गई मन अंदर है जप जप जीवान आओ हर कृपा प्रवे अपनी जन धूड़ी संग समाओ ज्यों तू राख है त्यों रहा तेरा दिता पहना खाओ उदम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए ना सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बिनासन तम हरण ऊचे अगम अमाओ मन विछड़िया हर मेलीए नान क्यों सुवाओ सर्व कल्याणा तित देन हर परसी गुर के पाओ वार माज की तथा श्लोक महला पहला मलक मरीद तथा चंद हरड़ा सुया की तुनी।

ढाडीवसय सच्चा खसम कलाण कामर वगसय खसम पूरा पाए मनोरहसय दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरसय सच्चा सदगुर सेवन सच्चा मार्ग दसय सच्चा शब्द विचार काल वधंसय ढाडी कथे अकथ सब सवारय नानक गुण गए रास हर जीव मिले प्यारे श्लोक मोहला पहला खत्यो जमे खते कर नित खत्या विच पागे तोते मूल न उत्तर है जे सो तोवन पागे नानक बगसे बगसी है नाए तापागी पाए मोहला पहला नानक बोलन चकना दुखशड मंगिए सुख सुख दुख दुदर कपड़े पैरे जाए मनुख जिथे बोलन हारिए तिथे चंगी चुप पौड़ी चारे कुंडा देख अंदर पालिया सचे पुरख अलख सिरज निहालिया उजड़ पुले रह गुर वे खालिया सतगुर सचे वाहो सच समालिया पाया रतन कराहो दीवा बालिया सचे सद सराहे सुखिए सच वालिया निडरिया डर लग गर्भ से गालिया नाव पुला जग फिरे बेतालिया त्रोक मल्ला तीजा पय वि जमे पय मरे पी पो मन में होय नानक पय जे मरे सहला आया सोए महला तीजा पैवन जीवे बहुत बहुत खुशियां खुशी कमाए नानक पैवन जे मरे मुए कारे उठ जाए पौड़ी सतगुर होए दयाल ता सरदा पूरी है सतगुर होए दयाल ना कभू चूरी है सतगुर होए दयाल ता दुख न जानिए सतगुर होए दयाल ता हार गमाणिए सतगुर होए दयाल ता जमका डर केहा सतगुर होए दयाल ता सदगी सुख देह सतगुर होए दयाल ता नाम निध पाई है सतगुर होए दयाल ता सच सुमाई है श्लोक मल्ला पहला सिर खुहाए पीए मलवाणी जूठा मंग मंग खाही होल फतीहत मोयलैंड पड़ासा पानी देख सगाही पेड़ा वांगी सिर खुहायन भरिए रखत सुहागी माऊ पीऊ किरत गवायन टब्बर रोमन ताही ओना पिंड ना पत्तल किरिया ना दीवा मोयकता उपाई अड़सड़ तीर्थ देन ना ढोई ब्राह्मण अन्न ना खागी सदा कुटीर रह दिन राती मथे टिके नागी झुंडी पाए बैनत मरने दर्दी बन ना जागी लकी कासे हथी फूमन अगो पिछी जागी ना ओए जोगी ना ओए जंगम ना ओए काजी मुल्ला दईये बगोए फिरे बगुत्ते फिट्टा वत्ते गल्ला जिया मार जीवा ले सोई अवर न कोई रखे दानो तैस नानो वन्ये पास पई सिर खुते पानी विच्चों रतने उपन्ने मेर किया माधानी आरसर तीर्थ देवी थापे पूर्वी लगे बाणी नाए निवाजा नाते पूजा नामन सदा सुजानी मोया जीव दिया कत होवे क्या सिर पाई गे पानी नानक सिर खुते सैतानी ए ना गल ना पानी उठे होए होए बिलावल जिया जुगत सुमानी उठे अनक मादक पाहा सबसे पड़दा होवे उठे काओ चरे न सुरगी सातन दही मिलोवे तेत के होम जग सद पूजा पय कार्ज सोह गुरु समुंद नदी सब सिखी नाते जित वड्याई नानक जे सिर खुते नावन नाही ता सत चटे सिर शाई महला दूजा अग्नि पाला के करे तूरज के ही रात चंद अनेरा के करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच सब किश होए नानक ता पद जानिए जापत रखे सोए पौड़ी तू सच्चे सुभान सदा कलाणिया तू सच्चा दीवान होर आवन जानिया सजे मंगे दान सेतु दे जेया सच तेरा फुरमान सबदे सोया मने ज्ञान ध्यान तुदे ते पाया कर्म पवे निशान ना चले चलाया तू सच्चा दातार नित देवे चढ़े सवाया नानक मंगे दान जो तुद पाया श्लोक महला दूजा दिखिया आख बुझाया सिवती सच सुमेयो इनको क्या उपदेसी है जिन गुर नानक देव महला पहला आ बुझाए सोई बूझे जिस आ सुझाए ते सबके सूझे कह कह कतना माया लूझे हुक्मी सगल करे आकार आपे जाने सर्व विचार
अखर नानक अख्यो आप लहे प्रात होवे जिस दात पौड़ी हों ढाडी वे कार कारे लाया हरा दे कै वार तुरु फुरमाया ढाडी सच्चे मैल खसम बुलाया सच्ची सिफत सलाह कपड़ा पाया सच्चा अमृत नाम भोजन आया गुरमती खादा रज तेन सुख पाया ढाडी करे पसाओ शब्द बजाया नानक सच सलाह पूरा पाया सुध राग गौड़ी ग्वारेरी महला पहला चौप दे दो पदे एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकार मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद पौ मुझ भारा वड्डा तोल मन मत हौली बोले बोल सिर तर चली गए सही गए पार नदरी करमी गुर बीचार पय बिन कोई न लंघ सपार पय पौ रख पय सवार रहाओ पय तन अग्न पखे पय नाल पय पौ कड़िगे सब सवार पय बिन घाट कच्चन कच अंधा सच्चा अंधी सट बुद्धि बाजी उबजे चाओ सहस सियाणप पवे न ताओ नानक मन मुख बोलन वाओ अंधा अखर वाओ दवाओ गौड़ी महला पहला डर कर कर डर डर डर जाए सो डर केहा जित डर डर पाए तुद बिन दूजी ना ही जाए जोश वरते सब तेरी रिजाए डरिगे जे डर होवे होर डर डर डरना मन का सोर रखाओ ना जीव मरे न डूबे तरे जिन किश किया सो किश करे हुक्मे आवे हुक्मे जाए आगे पाछे हुक्म सुमाए हंस हेत आसा असमान तिसी भूख बहुत नैसान बहु खाना पीना आधार विण खादे मर होए गुवार जिसका कोए कोई कोए कोए हो को तेरा तू सब ना का सोए जाके जी जन तन माल नानक आखण बिकम विचार गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर ओव सेख कहना है किस कहन ना जाए तो कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ शर्म सुरद ससुर पय करनी कामन कर मन लय सा संयोग वियाओ विजोग सच संतत कहो नानक जोग गौड़ी महला पहला पौने पानी अग्नि का मेल चंचल चपल बुद्ध का खेल नौ दरवाजे दुसमा द्वार गुजरे ज्ञानी एव विचार करता भगता सुनता सोई आ विचारे सो ज्ञानी होई रहाओ देगी माटी बोले पौन बुद्ध ज्ञानी मुआ है कौन मुई सूरत बाद अंकार ओ ना मुआ जो देखनहार जय कारण तड़ तीर्थ जागी रतन पदार्थ कढ़गी माही पढ़ पढ़ पंडित बाद बखाने पीतर हुंदी वस्त न जाने हो ना मुआ मेरी मुई बलाए ओ ना मुआ जो रहा सुमाए कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया मरता जाता अंदर ना आया गौड़ी महला पहला दखनी सुन सुन बूझे माने नाओ ताके सुर बले हारे जाओ आप पुराए ठोर न ठाओ तू समझावे मेल मिलाओ ना मिले चले मैं नाल विणनावे बादी सब काल अरहाओ खेती वणजनावे की ओट पाप पुन बीज की पोट काम क्रोध जी मैं चोट नाम सार चले मन खोट सचे गुर की सची सीख तन मन शीतल साज परीख जल पुरायन रस कमल परीख शब्द रते मीठे रस ईख हुक्म संजोगी खड़ दस द्वार पंच वसे मिल ज्योति पार हार तुले आपे बनजार नानक नाम सवारन हार गौड़ी महला पहला जातो जाए कांते आवे है उपजे कह जाए सुमावे क्यों बाध्य क्यों मुक्ति पावे को अविनाशी सह सुमावे नाम हृदय अमृत मुख नाम नरहर नाम नरहर ने काम रखाओ हिजे आवे सहजे जाए मन ते उपजे मन माए सुमाए गुरमुख मुक्तो बंद न पाए शब्द विचार छुट्टे घर नाए तरवर पंखी बौर सुबास दुख दुखिया मन मोए विनाश साझ ब्याग तके आगास दह दह तावे कर्म लिख्यास नव संयोगी गोयल थाट काम क्रो फूटे बिखमाट बिन वखर सुनो कर हाट गुरमेर खोले बजरक पाठ साध मिले पूर्व संयोग सच रहस्य पूरे हर लोक
ਤਨ ਮਨ ਦੇਹ ਲੈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚੀਤ, ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਜਾਗੇ ਹੈ ਪੀਤ, ਪੂੰਜੀ ਪਾਪ ਲੋਭ ਕੀ ਕੀਤ, ਤਰਤਾਰੀ ਮਨ ਨਾਮ ਸੋ ਚੀਤ, ਵਾਹ ਸੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਹੋ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਏਕ, ਹਰਹਾਓ ਅਗਨ ਪਾਣੀ ਬੋਲੇ ਪੜਵਾਓ, ਜੇਵਾ ਇੰਦਰੀ ਏਕ ਸੁਵਾਓ, ਟਿੱਟ ਵਿਕਾਰੀ ਨਾਹੀਂ ਪਉ ਪਾਓ, ਆ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਪਾਏ ਨਾਓ, ਸਬਦ ਮਰੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਮੂਏ ਕਿਉਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏ, ਪਰਪੰਚ ਵਿਆਪ ਰਹਿਆ ਮਨ ਦੋਏ, ਫਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਬੋਧ ਚੜੋ ਜਾਂ ਆਵੇ ਵਾਰ, ਠਾਕੇ ਬੋਹਿਤ ਦਰ ਗਏ ਮਾਰ, ਸੱਚ ਸਲਾਈ ਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਕਰ ਏਕੰਕਾਰ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਉਲਟਿਓ ਕਮਲ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਗਗਨ ਦਾ ਦੁਆਰ, ਤੇਰ ਪਵਨ ਬੇਦਿਆ ਆ ਮੁਰਾਰ, ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਨ ਕੀਜੈ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਜੈ, ਰਖਾਓ ਜਨਮ ਜੀਤ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਆਮੂਆ ਮਨ ਮਨ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਭਈ ਹਰ ਕਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਤ ਸਾ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਨਾਮ, ਅਲਕ ਵਿਸਾਰ ਕਰੋ ਕਿਸ ਕਾਮ, ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਅੰਤਰ ਜਾਮ, ਹਾਨ ਮਨੋ ਤੋ ਪਰ ਕਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਜਤੋ ਨਾਈ ਕੋਤਾਓ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿ ਸੁਮਾਓ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੋ ਮਰਨ ਦਿਖਾਏ, ਮਰਨ ਰਹਿਣ ਅੰਤਰ ਪਾਏ, ਗਗਨ ਨਿਵਾਰ ਗਗਨ ਪੁਰ ਪਾਏ, ਮਰਨ ਲਖਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਰਹਿਣ ਕਾ ਸਰਣਾ ਰਖਾਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦੁਬਦਾ ਭਾਗੇ, ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਮਨਹਰ ਪ੍ਰਵਲਾਗੇ, ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਮਾਰਸ ਆਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਚ ਸੰਜਮ ਸੂਚਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ, ਕਰ ਮਿਲੇ ਜਮਕਾ ਪਉ ਮੂਚਾ, ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਮਿਲ ਅੰਕ ਸਮਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਹੋਮੇ ਮਾਰ ਮਿਲਾਇਆ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਨੇ ਮੇਟੇ ਕੋਏ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਆਗੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਤੂੰ ਭਾਣਾ ਸੋਈ ਹੂਆ।

आए, उत कुटुंब गृह मोहया माए, मनमुख अंधा आवै जाए, हर हर नाम देवै जन सोए, अन दिन भगत गुर सबदी होए, गुरमत

किश रूप नहीं, किस जात नहीं, किश टंग ना मेरा, क्या मुंह ले बोले गुण बिहून, नंद पिया ना तेरा, हम पापी संग गुर उबरे, पुन सतगुर केरा, सब जियो पिंड मुख नक दिया, वर्तन को पानी, अन्न खाना कपड़ पहनन दिया, तस अन्न भुगानी, जिन दिए सो चित न आवी, पशु हो कर जानी, सब कीता तेरा वर्तदा, तू अंतर जामी, हम जंत विचारे क्या करे, सब खेल तुम स्वामी, जन नानक हाट विहाजया, हार गुलम गुलामी, गौड़ी बैरागण मुहला चौथा, जो जननी सो जन पालती, राखे नदर मजहार, अंतर बार मुख दे ग्रास, खिन खिन पोचार, तू सदगुर गुरसिख राखता, हर प्रीत प्यार, मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है आने, तन तन गुरु गुर सदगुर पांदा, जिन हर उपदेह दे किए सियाने, रखाओ जैसी गगन फिरंती उड़ती, कपरे बागे वाली, ओ राखे चीत पीछे बिच बचरे, नित हिरदे सार समाली, त्यों सदगुर सिख प्रीत हर हर की, गुर सिख रखे जी नाली, जैसे काती तीस बतीस है, विच राखे रसना मासरत केरी।

जिस मिले मन होए आनंद, तो सतगुर कहिए मन की दुविधा बिन सजाए, हर परम पद लहिए मेरा सतगुर प्यारा किस विध मिले, हौ खिन खिन करी नमस्कार मेरा गुर पूरा क्यों मिले रखाओ, हर कृपा हर मिलिया मेरा सतगुर पूरा, इश पुनी जन केरिया लिस गुर तूरा, हर भगत रड़ावे हर भगत सुने,

तिस गुर मिल उदरे हर गुण गा वाही। महला चौथा गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रकीनी। मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग पया अत गूड़ा। हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभु की हो गोली। जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली। अरहाओ करो विवेक संत जन पाई खुज हिरदे देख टंडोली। हर घर रूप सब जो सबाई हर निटवसे हर कोली। हर घर निटवसे सब जाक अपरंपर पुरख अतोली। हर घर प्रटकियो गुरपूर सिर वेचो गुर पै मोली। हर जी अंतर बाहर तुम शरणागत तुम वड़ पुरख वडोली। जन नानक अनदिन घर गुण गावे मेले सतगुर गुरु वे चोली। गौड़ी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी। जगदीशर पुरख विधाते जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी। जित मार्ग हम जाते आराम मेरा मान हर से तीराते। सत संगत मिल राम रस पाया हर रामे नाम समाते। रहाओ हर घर नाम हर घर जग अवखद हर घर नाम घर साते। जिनके पाव दो सा बिनसे जो गुरमत राम रस गाते। जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सर नाते। दुरमत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते। राम तुम आपे आप आपरा ठाकुर तुम जेवड़ अवर ना दाते। जन नानक नाम लय ता जीव हर जपिए हर कृपा ते। गौड़ी पूर्वी महला चौथा करो कृपा जग जी मन दाते। मेरा मन हर सेती राचे सदगुर भजन दियो अत निर्मल। जप हर हर हर मन माचे राम मेरा मन तान बेद लियो हर साचे। जे काल के मुख जग सब गरसया कुर सदगुर के बचन हर हम बाचे। रहाओ जिनको प्रीत नहीं हर सेती ते सागत मूढ़ नर काचे। तिनको जन्म मरण अद पारी विच विष्टा मर मर पाचे। तुम दयाल सरण प्रतपालक मोको दीजे दान हर हम जाचे। हर के दास दास हम कीजे हम नृत्य करे कर नाचे। आपे सावडे प्रस्वामी हम वन जारे है ताचे। मेरा मन तन जियो राज सब तेरी जन नान के सा प्रसाचे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा तुम दयाल सर्व दुख पंजन एक बिनो सुनो दे कान। जेते तुम्हार जाने स्वामी तो सदगुर मेर मेरा प्राणे। राम हम सदगुर पार ब्रह्म कर माने हम मूढ़ मुग्ध अशुद्ध मत होते। गुर सदगुर के बचन हर हम जाने। रघाओ जितने रस अन रस हम देखे तब तितने फीक फीका ने। हर का नाम अमृत रह चाखेया मिल सदगुर मीठ रस गाने। जिनको गुर सदगुर नी पेटेया ते सागत मूढ़ देवाने। तिनके कर्महीन थुर पाए देख दीप कमोए पचाने। जिनको तुम दया कर मेलो ते हर घर सेव लगाने। जन नानक हर हर हर जा प्रगटे मत गुरमत नाम समाने। गौड़ी पूर्वी महला चौथा मेरे मन तो प्रसदा ना लगे स्वामी। तो किथे हर पौ नसीए हर आपे बख्स लय पर साचा। हर आप छुड़ाए छुटिए मेरे मन जप हर हर हर मन जपिए। सदगुर की शरण आई भजको मेरे मना गुर सदगुर पीछे छुटिए। रहाओ मेरे मन सेवो सो पर सर्व सुखदाता जित सेवे निज कर वसीए। गुरमुख जाय लहु कर अपना तस चंदन हर जस तसीए। मेरे मन हर घर हर घर हर जस उत्तम लै लह हर मन हसीए। हर आप दया कर देवे ता अमृत हर हस चखीए। मेरे मन ना बिना जो दूजे लागे ते सागत नर जम कुटीए। ते सागत चोर जिन्ना नाम सारिया मन तिन के निट ना पिटीए। मेरे मन सेवो अलख निरंजन नर हर जित सेवे लेखा छुटीए।

आओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम घर जानो मेरी अनदन नाम जपी सुख पाई निर्जीवा आस घर तेरी गौर सतगुर दाते पंथ बताया हर मिलिया आयपा मेरी अनदन अंध पया बड़पागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश करते सब वस गत गया।

प्रीत राम राय की गुरमार्ग पंथ बताया मेरा जियो पिंड सब सगुर आगे जिन विछड़िया हर गल लाया मेरे अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हिरदे नाल दिखाया सहज आनंद पया मन मोर गुर आगे आ विचाया हम अपराध पाप कीने सर दुटी चोर चुराया आप नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाहद गुरमत मनुआ गावे वड़भागी गुर दर्शन पाया तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे हरहाओ हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे हम मल मल धोवे पाप गुरु के जो हर हर कथा सुनावे हिरदे गुरमतरा मरसायण जे वा हर गुण गावे मन रसक रसक रस आघाने फिर बोर न पूख लगावे कोई करे उपाप अनेक भो तेरे बिन कृपा नाम न पावे जन नानक हर कृपा तारी मत गुरमत नाम दिरड़ावे राग गौड़ी माज महला चौथा गुरमुख जिंदु जप नाम करम्मा मत माता मत जियो नाम करामा संतोख पिता कर गुर पुरख अजरमा वड़भागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो गोर हा रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो वड़भागी मिल सूड सुजानी जियो मेरा मन तनहा रंग पिन्ना आवो संतो मिल नाम जपाहा वे संगत नाम सदा ले लाहा जियो कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो मिल पूर्व लिखड़े तुर कर्मा तामन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर को केड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत बुठड़ा मिलिया हर राया जियो जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज मुखला चौथा आओ सभी गुण कामन करी हा जियो मिल संत जना रंगमाने रलिया जियो पुर दीप ज्ञान सदा मन बरिया जियो हर तुठे टोल टोल मिलिए जियो मेरे मंत्र प्रेम लगा कर टोले जियो मैं मेले मित्र।

जियो, गुरसरदी पाई गए हर प्रीत मराओ जियो, वडभागी जपनाओ जियो, मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रव्यासा जियो, हर मेलो संत जियो, गोविंद प्रापासा जियो, गुरमत नाम सदा प्रगासा जियो, जन नानक पूरे अड़ी मन आसा जियो, गौड़ी माज मगला चौथा, मेरा बिरगी नाम मिले ता जीवा जियो, मन अंदर अमृत गुरमत घर लीवा जियो, मान हर अंगरतड़ा हर सदा पीवा जियो, हर पायड़ा मन जीवा जियो, मेरे मन तन प्रेम लगा घर बाण जियो, मेरा प्रीत मित्र घर पुरख सुजान जियो, गुरमेले संत हर सुड़ सुजान जियो, हौ ना मिटो कुरबान जियो, हौ हर घर सज्जन हर मीत साई जियो, हर दसो संतो जी।

राजन की लीला माना सोहेला परपंच हीला हर कृपा संतन से कहया सर्व सुख एव आनंद लहया सा संग हर कीर्तन गाई है कौ नानक वडभागी पाई है जाके हर तन सोई सोहेला प्रभु कृपा ते सत्संग मेला रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा प्राणी जाने इव तन मेरा बहोर बहोर उहाउ लपटेरा उत्तर कलत्तर ग्रित का फासा हो न पाएगे राम के दासा कवन सो बिद जित राम गुण गाए कवन सो मत जित तरह ए माए रहाओ जो भलाई सो बुरा जाने साज कह सो बिखे सुमाने जाने नाही जीत अरहार जो लेवा सागर संसार जो हल हल सो पी वे बौरा अमृत नाम जाने कर कौरा सह संके नाही नेर लग चौरा सी पमता फेर एके जाल फाए पंखी रस रो करे बौरंगी कहो नानक जे पय कृपाल गुर पूरे ताके काटे जाल गौड़ी ग्वारेरी मोहल्ला पंजवा कहो कृपा ते मार्ग पाई है प्रकृपा ते नाम ते आई है प्रकृपा ते बंधन छुट्टे

तिस्तू मन रचना कहो गुसाई मिलिए केहे जोब वर्जत तिस्तू नेहे रहाओ तूड़ बात सा सच कर जाती सत हो मन मन लगे ना राती बावे मार्ग टेढ़ा चलना सीधा छोड़ अपूठा बुनना दोआं सिरियां का खसम।

पाला तय सहज अखारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता हारख अनंत सोख नहीं दिया तो घर गुरु नानक को दिया गौड़ी मोहल्ला पनवा कमन रूप तेरा आराधो कमन योग ताया ले साधो कमन गुण जो तुझ ले गावो काबल मोल पार ब्रह्म रिझाओ रहाओ कौन सो पूजा तेरी करो कौन सो विद जिद पवजल करो कमन ताप जित तपिया होए कमन सो नाम होमे मलख होए गुण पूजा ज्ञान ध्यान नान सगल कहाल जिस कर कृपा सदगुरु मेले दयाल तेसी गुण

पाते मोय असनाहा, मीत हमारा अंतरजामी, समरथ पुरख पार ब्रह्म स्वामी। हम दासे तुम ठाकुर मेरे, मान महत नान प्रा तेरे, गौड़ी महला पंजवा। जा को तुम पै समरथ अंगा, ताको कछ नाही कालंगा। माधव जाको है आज तुम्हारी, ताको

पूर्ण पद पाया, साध संग पे परम मिटाया, जड़ का देखो तद रहा समाए, नानक दास हर की शरणाए, कौड़ी मोहल्ला पंजवा, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, जप जप जीवा सतगुर नाओ, बार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव, हर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सबल जन होवे परवान, गुर पारवंड कर जान, संतूर पाए गए वड़ भागी, नानक गुर पेड़ हर त्यों लिव लागी।

त्रय जाए, बिन घर सिमरन सुख नहीं पाया, आरंग फीके सा माया, गुरंगे से पय निहाल, कहो नानक गुर पय है दयाल, गौड़ी मोहल्ला पंजवां, सिमर स्वामी किल बिकनासे, सोग सहज आनंद निवासे, राम जना को राम भरोसा, नाम जबत सब मिट्यो अंदेसा, हराव सा संगज पौ ना प्राति, गुण गोपाल गाय गे दिन राति, हर किर प्रभ बंधन छोट, चरण कमल की दिनी ओट, कहो नानक।

पाई सोग सहज सांत आनंदा जप जप जीवे परमानंदा नाम रास सासंग घाटी कहो नानक प्रभ अवधा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सा मिटे कलेश चरण कम मन में परवेश उचरो राम नाम लख बारी अमृत रह पीओ प्यारी रखाओ सोग सहज रसमह आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लो मद खोए साध के संग किलब सब थोए हर कृपा प्रभु दीन दयाला नानक दीजे साधर वाला गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पहने खाए इस आस क्यों बने माए खमसार आन कम लागे हौडी बदले रतन त्याग गए रखाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दा सलाम करत का शोभा अमृत रस खावे खान पान जिन दिए तसे न जाने स्वान कहो नानक हम लूण हरामी बगस लो प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन मय ध्यान सगल तीर्थ मज्जन स्नान हर दिन हर सिमरन मेरे पाई कोड़ जन्म की मन ले जाई रहाओ हर की कथा हृदय बसाई मन बांझत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जा कर दिवसे भगवान हो नानक से ही जन पूरे जिना प्राप्त साधु तूरे गौड़ी महला पंजवा खांदा पैन दा मुँह कर पाए तिसनु जो है तू तरमराए तिसो बेमुख जिन जियो पिंड दीना होर जन्म परम में बोजू न रहाओ सागत की ऐसी है रीत कुछ करे सगल विपरीत जियो प्राण जन मन तन थारिया तो ई ठाकर मनो बसारिया बदे विकार लिखे बोकागर नान कुदर कृपा।

मिल नानखर अंतरजामी गौड़ी मोहल्ला पंजवा आड़ पर संगी पटवारे हर कृपा प्रभु लहे निवारे ऐसा हार श्रमो सब कोय सर्व कला पूर्ण प्रसोए रहाओ महा तप्त सागर संसार प्रखिर में पार उतारन हार अनक बंधन तोरे नहीं जाहे सिमरत नाम मुग्ध फल पाहे उगत सियानप इस्ते कशनाहे हर कृपा नान गुण गाहे गौड़ी मोहल्ला पंजवा साती पाई हर को नाम विचर संसार पूर्ण सब काम वड़पागी हर कीर्तन गाई है पार ब्रह्म तू देता पाई है रहाओ हर के चरण हृदय उतार पाल सागर चढ़ उतरे पार साधु संग करो सब कोय सदा कल्याण फिर दुख न होए।

का संताप, जिस सहाई गोविंद मेरा, देखो जमनी आवे नेरा रहाओ, साची दर गए बोले कूड़, सिरहाल पछोड़े अंधा मूड़, रोग व्यापे कर दे पाप, अदली होए बैठा प्रव्याप, अबन कमाए आपे बांधे, दरब गया सब जी के साथे, नानक शरण परे दरबार, राखी पैज मेरे करतार, गौड़ी महला पंजवा, जन की तूर, मन मीठ खटानी, पूर्व कर्म लिखिया तुरप्राणी रहाओ, अहंग बुद्ध मन पूर्त धाई, सा तूर कर शुद्ध मंजाई, अनक जरा जे तोवे देही, मैल न उतरे शुद्ध न तेही, अगर पेट सा कृपाल, हर सेमर सिमर काट्या फोकार, मुक्त भुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नान गुण गाओ, गौड़ी महला पंजवा, जीवन पदवी हर के दास, जिन मिलिया आत्म प्रगास, हर का सिमरन सुन मन कानी, तू पावे हर द्वार प्राणी रहाओ, आड़ पर त्यागे गोपाल, नानक दर्शन देख निहाल, गौड़ी महला पंजवा, सांत पई गुरु गोविंद पाई, तापा बिनसे मेरे पाई रहाओ, राम नाम नेत्रसन बखान, बिनसे रोग पय कल्याण, पार ब्रह्म गुण अगुण विचार, साधु संग मघय निस्तार, निर्मल गुण गावो नितनीत, गई ब्याज उभरे जनमीत, मान भय क्रम प्रभु अपना त्याई।

सोपाया मया करी पूर्ण हर राया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे पाग हर हर नाम अस्त्र सुहाग। गौड़ी मोहल्ला पनवा धोती खोल विछाए हेठ गर्द वांगू लागे पेठ। बिनकर तूती मुक्त न पाई है मुद पदार्थ नाम त्याई है रहाओ। पूजा तिलक करत इसनाना चुरी कढ़ लेवे हसदाना। वेद पढ़े मुख मीठी बाणी जिया कोत न संगे।

शरण परे प्रभ अंतर जामी, नान कोट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवा। हर सिंह राते पाए ना जले, हर सिंह राते माया नहीं चले, हर सिंह राते नहीं डूबे जला, हर सिंह राते सुभल भला, सब मिटे तुम्हारे नाय, पेट संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर सिंह राते मिटे सब चिंता, हर स्यों सो रचे।

अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निध नहीं गाया मान बिखे ही मैं लुजी गए जाको रे कृपा करे जीवत सोई मरे।

आयो बाल बुद्ध सुखरे हरख सोग हान मृत दुख सुख चित संसार गुर मिले रहाओ जाओला हौक सोचो चितव तौलो दुखन परे

इनका आड़ न पाया। आगे चलन और है पाई, ऊहा कामना आया। तीर्थ नहाए अर धरणी प्रमता, आगे ठौर न पावे, ऊहा कामना आवे। ए विद ओ लोग नहीं पति आवे, चतर वेद मुख बचनी उच्चरै। आगे महल न पाई है, बूझे नाही एक सुधाखर, ओ सगली झाख चुखाई है। नानक कहतो यो विचार, जे कमावे सो पार गरामी। गुर सेवो हर नाम त्यावो, जागो मनो गुमानी। गौड़ी माला मोहल्ला पंजवा, माधो हर घर हर मुख कही है। हम ते कछु न हो वै स्वामी, ज्यों राखो त्यों रहिए रखाओ। क्या कछ करे के करने हारा, क्या इस हाथ बिचारे। जित तुम लाभ हो तित ही लागा, पूर्ण खसम हमारा।

बहुमान जोर तुम्हारे सुख वसा सच शब्द निशान रखाओ सबे गल्लां जातियां सुनके चुप किया कलगी सुरतना लदिया माया मोड़िया दे बुझारत सारता से अखें जिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहया एक स दो चौक्या गणी सब एकत साध मुठी एक अगनाए रसीड़ा।

मित्र सब पदार्थ सब भला सर्व गुणा जिस माहे क्यों गोविंद मनो वसारी है जिस सिमरत दुख जाहे जिस लड़ लगे है जीवी है भवजल पई है पार मिल साधु संग उधार होए।

साधो यो मन गयो न जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, याते थिर न रहाई। रहाओ कठन क्रोध कट ही के पीतर, जे शुद्ध सब सराई। रतन ज्ञान सब को फिर लीना, तस कछ न बसाई। योगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुन गाई। जन नानक हर पय दयाला, तौ सबिद बन आई। गौड़ी महला नामा, साधो गोविंद के गुन गावो। मानस जन्म अमोल पायो, बिरथा काए गवावो। रहाओ पतत पुनीत दीन बंद हर, शरण ताए तुम आओ। गाय को त्रास मिट्यो जे सिमरत, तुम काहे बिसरावो। ताज अभमान मोह

माया मोह महासंकट बाण तास्यों रुच उपजावे अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यों निहो न लावे नानक मुक्त ताहे तुम मानो जे कड़ राम सुमावे गौड़ी मोहल्ला नावा साधो राम शरण बिसरामा वेद पुराण पढ़े को ए गुण सिमरे हर को।

कैसा डर कमन, शब्द पिछाने तीन ने पावन, जिन कहया तिन कहे नुखाने, जिन बूझिया तिन सहज पिछाने, देख विचार मेरा मन माने, कीर्त सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रहा सुमाई, निकर व्याप रहा निचाई, पुस्तक करे के ते मुन प्रीत, तन मन सूचे सा सोचीत, नानक हर पज नीता नीत, गौड़ी गुआरे री मोहल्ला पहला, ना मन मरे न कार्ज होए, मन वस दूता दुरमत दोए, मन माने गुरते एक होए, निर्गुण राम गुणे वस होए, आव निवार विचारे सोए, रहाओ मन पुल्लो बो चिते विकार, मन पुल्लो सिर आवे पार, मन माने हर एक अंकार, मन पुल्लो माया।

एक निरंजन गुरमुख जाता, दूजा मार शब्द पछाता, एक हुकम वरते सब लोई, एक ते सब ओपत होई, रहा दोवे खसम एको जान, गुर कै शब्द हुकम पछान, सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सालाही, गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे ता साचा, मुक्त भेद क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत बीचार है, पंच मार साच उरथार है रहाओ, जिसके अंतर साच बसावे, जो जुगत की कीमत पावे, रस एको गृह उद्यान, करणी कीर्त कर्म समान, एक शब्द एक भिख्या मांगे, ज्ञान ध्यान जुगत सज जाग, पाए रच रहे न बाहर जाए, कीमत कौन रहे लिव लाए, आपे मेले परम चुकाए, गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की सेवा शब्द विचार, होमे मारे करणी सार, जब तब संजम पाठ पुराण, कहो नानक अपरम परमान, गौड़ी महला पहला, खेमा गही व्रतशील संतोखं, रोग ना व्यापे ना जम दुखं, मुक्त पय प्रारूप ना रेखं, योगी कौ कैसा डर होए, रूख बिरख गे

मन त्रिवतास्या अलख अपेवा, जय जय देखो तय तय साचा, बिन बूझे झगरत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, कर कृपा रख हो रखवाले, बिन बूझे पशु पय बेताले, गुर कया अवर नहीं दूजा, किस को देख करो अन पूजा, संत हेद पर्व तिरप हमन तारे, आत्म चीने सो तत् विचारे, साज हृदय प्रेम निवास, परम नानक हम ताके दास, गौड़ी महला पहला, ब्रह्मे गर्व किया नहीं जानिया, वेद की विवत पड़ी पछतानिया, जय प्रसमरे तई मन मानिया, ऐसा गर्व बुरा संसार, जिस गुर मिले जिस गर्भ निवार रहाओ, बल राजा माया अहंकारी, जगन करे वो पारे वारी, बिन गुर पूछे जाए पयारी, हरी चंद दान करे जस लेवे, बिन गुर अंत न पाए अपेवे, आप पुलाए आपे मत देवे, दुर्मत हरनाश दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी, प्रहलाद उधारे कृपा तारी, फूलो रावण मुद अचेत, लूटी लंका सीत समेत, गर्भ गया बिन सदगुर हेत, सहस बहु मद कीट में खसा, हरनाश ले नहो बेदासा, दय संघारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संध काल जमना सिंघारे, रक्त बीज काल नेम बिदारे, दय सिंघार संत निस्तारे, आपे सदगुर शब्द बीचारे, दूजे पाए दैत संघारे, गुरमुख साहिब भगत निस्तारे, बूढ़ा दुर्योधन पद खोई, राम न जानिया करता सोई, जान को दुख पचे दुख होई, जिन मेजे गुर शब्द न जानिया, क्यों सुख पावे परम भुलानिया, एक तिल पूले बौर पछतानिया, कांस केस चांडूर ना कोई, राम न चीन्या अपनी पद खोई, बिन जगदीश न रख कोई, बिन गुर गर्भ न मिटिया जाए, गुरमत धर्म तीर्ज हर नाए, नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला, चोवा चंदन अंक चढ़ाओ, पाठ पटंबर पैर हंडाओ, बिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पैरो क्या ओढ़ दिखावो, बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गाल मोतियन की माला, लाल निगाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सो पाला, नैन सुनन्नी सुंदर नारी, खोर सीगार करे अद प्यारी, बिन जगदीश पजे नित खुआरी, दार कर महिला से सुखाली, तैनस फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो दे सुखाली, हैबर गैबर नेजे वाजे, लस्कर नेब खुवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो हृद सिद्ध बुलाओ, ताज कुल है सिर छत्र बनाओ, बिन जगदीश कहां सद पाओ, खान मलूक हावो राजा, अबे तबे कूड़े गए पाजा, बिन गुर शब्द न सबर सकाजा, होमे ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जान्या हृदय मुरारी, परमत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक न जानस अवरे, पर पंच ब्याद त्यागे कवरे, पाए मिले सच साचे सच रे, ऐसा राम पत जन होई, हर गुण गाय मिले मलत होई रहाओ, उन्दो कावल सगल संसारे, दुर्मत अगन जगत पर जारे, सो उबरे गुर शब्द बीचारे, प्रेंग पतंग कुंचर अरमीना, मिर्ग मरे से अपना कीना, तिसना राज तत् नहीं बीना, काम चिते कामन हितकारी, क्रोध बेनासे सगल विकारी, पात मत खोवे नाम सारी, पार कर चीत मनमुख डोलाए, गल जेवड़ी तंदे लपटाए, गुरमुख छूट सुहर।

था वेद पुराण पढ़े सुन थाटा बिन रस राते मन भो नाटा ज्यो चातरक जल प्रेम प्यासा ज्यो मीना जल माए उलासा नानक हरस पी त्रिपतासा गौड़ी महला पहला हट कर मरे ना लेखे पावे वेस करे बो पसम लगावे नाम सार बहुत पछतावे तू मन हर जियो तू मन सूख नाम सार।

किसे मुकाम, सा मरे संते माया दाम, मैं तन दीजे हर अमृत नाम, तरैयत मैर मुकदम सिकदार, निचल कोई ना दिसे संसार, अफिर काल कूड़ सिर मार, निचल एक सच्चा ससोई, जिन कर साजी तिने सब गोई, ओ गुरमुख जापे ता पद होई, काजी सेख पेह फकीरा, वड़े कहावे होमे तन पीरा, काल ना छोड़े बिन सरगुर की तीरा, काल जल जेवा अरनैणी, कानी काल सुने बिखबैणी, बिन शब्दे मूठे दिन रैणी, हिरदे साच वसे हर नाए, काल ना जोए सके गुण गाए, नानक गुरमुख सब सुमाए, गौड़ी महला पहला, बोले साज मिथ्या नीराई, चाले गुरमुख हुकम मर जाई, रह अतीत सच्चे सरनाई, सत कर बैसे काल ना जोह, मनमुख को आवत जावत दुख मोह, रहाओ आप्यो पियो अकस कस रहिये, निरकर बैस सहज कर लइये, हस माते उस कहिये, गुरमत चाल निचल नहीं डोले, गुरमत साच सहज कर बोले, पीवे अमृत तत विरोले, सतगुर देखिया दिखिया लीनी, मन तन अर्प्यो अंतरगत कीनी, गत मित पाई आत्म चीनी, भोजन नाम निरंजन सार, परमहंस सजो

ले आप हो जाओ। मानमुख सूत को कभे न जाए, जिचिर शब्द न पीजे हर कह न आए। रहाओ सबो सूत के जेता मो आकार, मर मर जमे वारो वार। सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाहे। सूतक करमन पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए। सदगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए। शास्त्र सिमरत सो देखो कोए, विण नावे को मुक्त न होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, काल में गुरमुख उतरस पार। साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रहे सुमाए। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण आधारा। हर जू राखो हृदय उरतारा, गुरमुख शोभा साज द्वारा। पंडित हर पढ़ तजो विकारा, गुरमुख भौजल उतरो पारा। रहाओ गुरमुख विचो होमे जाए, गुरमुख मैल न लागे आए। गुरमुख नाम से मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई। गुरमुख अंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई। अपना मन पर बुद्ध हो बुझो सोई, लोग समझावो सुने ना कोई। गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंप बहु चतराई। जो कुछ कमावे सो थाए न पाई, आवे जावे ठौर न काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बागजो लाए बहे नित्याना। जा पकड़िया तब ही पछताना, बिन सदगुर सेवे मुक्त न होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई। गुरमुख जात पद नामे वड्याई, सायर की पुत्री बिदार गवाई। नानक बिन नावे झूठी चतराई, गौड़ी महला तीजा। ए जो का धर्म पढ़ो तुम पाई, पूरे गुरसब सोजी पाई। ऐथ अगे हर नाम सिखाई, आराम पढ़ो मन करो विचार। गुर प्रसादी मैल उतार। रहाओ वाद विरोध न पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए। गुर कै शब्द सच लिव लाए, हौ में मैला एओ संसारा। नित तीर्थ नावे न जाए अंकारा, बिन गुर पेटे जम करे खुवारा। सोजन साचा दे हो में मारे, गुर के शब्द पंच संघारे। आप तरे सगले कुल तारे, माया मोहे नट बाजी पाई। मानमुख अंदर हे लबटाई, गुरमुख अलिप्त रहे लिवलाई। बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर न फिरे अंकारी। आप न चीने बाजी गारी, कापड़ पैर करे चतराई। माया मोहे अध परम फुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। नाम रते सदा बैरागी, गृह अंतर साच लिव लागी। नानक सदगुर सेवा से वड़फागी, गौड़ी महला तीजा। ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तेते उपजे दे मोह प्यासा। त्रै गुण परमे नाही निज करवासा, हम घर राखे सदगुरु मिलाया। अन दिन भगत घर नाम दृढ़ाया। रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पड़वाद वखाणे सिर मारे जमकाला। तत न चीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान कुमार्ग पाए। हर नाम सारिया बहु कर्म दृढ़ाए, पवदल डूबे दूजे पाए। माया का मोहताज पंडित कहावे, विख्या राता बहु दुख पावे। जम का गल जेवड़ा नितकाल संतावे, गुरमुख जम काल ने

पर पाईए ना मने सुख होय, सगुर ते नाम पाईए धर्म मिले प्रसोय, सगुर ते जो मोह फेरे ओए क्रम दे ना टिकन, तरत असमान ना चलई विच विष्टा पए पचन, यो जग परम भुलाया मोहे ठगो ली पाए, जिन्ना सगुर फिटया ते नेड़ ना फिटे माए, सगुर सेवन सो सोने होमे महल गवाए, अवधरते से निर्मले चले सतगुर पाए, हर प्रदाता एक तू तू आपे बख्श मिलाए, जन नानक शरणागति जो पावे तवे छिड़ाए, राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा कर हले, एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर हले, मन परदेसिया क्यों मिल गए घरमाए, गुर पाग पूरे पाया गल मिलया प्यारा आए, मन कर हला सतगुर पुरख ते आए, हरहाओ मन कर हला विचारिया हर राम नाम ते आए, जिथे लेखा मंगिए हर आपे लय छिड़ाए।

देख देख जीवा, गुर के चरण तोय तोय पीवा, गुर की रेण नित मजन करो, जन्म जन्म की होमे मलहरो। किस गुर को चूला भू पाखा, मां अग्न ते हाथ दे रखा, किस गुर के ग्रह टोभो पानी, जिस गुर ते अकल कद जानी।

लाख अडंबर बहुत विस्तार, ना बिना झूठे पासार, हर का नाम सोई जन ले, पर कृपा नानक जिस दे, गौड़ी महला पंजवा, आद मर जो अंत निबाह, सो सचम मेरा मन चाह, हर की प्रीत सदा संग चाल, दयाल पुरख पूर्ण प्रतपाल रहाओ, बिन सतनाही छो

हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, रहाओ तज होमे गुर ज्ञान भजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसे सो संग न गयो, सागत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहे हो, ओड़ मदे किने गुरमुख लहे हो।

गुर शब्द विचारे हो में मारे इन बद मिलो प्यारे सा तन सुहागण सदा रंग राती साचे नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गई है दुबदा मार निवारे नानक कामन हर वर पाया सगले दुख विसारे कामन पिरों भुली जियो माया मोए प्यारे झूठी झूठ लगी जियो कूड़ मुठी कूड़ियारे कूड़ निवारे गुरमत सारे जूए जन्म नहारे गुर शब्दे सेवे सच समावे विचों हो में मारे हर का नाम हृदय विसाए।

पाए प्यारे रायण सुसुती जियो अंतर उरतारे मिल गए प्यारे अन दिन दुख निवारे अंतर महल पिररावे कामन गुरमती विचारे अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे नानक सच मिली सुहागन गुर कै हेत अपारे आवो दया करे जियो प्रीतम अत प्यारे कामन बिनो करे जियो सच शब्द सीगारे सच शब्द सीगारे हो में मारे गुरमुख कार्य सवारे जो जुग एको सच्चा सोई बूझे गुर बिचारे मनमुख काम आपी मोह संतापी किसे आगे जाए पुकारे नानक मनमुख थाओ न पाए बिन गुर अत प्यारे मुंद एयाणी भोली निगुणिया जियो फिर अगम अपारा आपे मेल मिलिए जियो आपे बख्शनहारा अवगण बख्शनहारा कामण कंत प्यारा घट घट रहा समाई प्रेम प्रीत पाए भगती पाईए सतगुर बूझ बुझाई सदा आनंद रहे दिन राती अनदन रहे लिवलाई नानक सहजे हर वर पाया सात हन नौ निध पाई गौड़ी महला तीजा माया सर सबल वरतै जियो क्यों कर दुत्र तरिया जाए राम नाम कर भोथा जियो शब्द खेबट विच पाए शब्द खेबट विच पाए हर आप लंघाए इन विद दुत्र तरीए गुरमुख भगत प्राप्त होवे जीवतियां इओ मरिए खिनमय राम नाम के लिख काटे।

अगर पाए रसना शब्द सुहाए, नाम त्याय सुधा सुख पाए, नाम रहे लिवलाए, नामे उपजे नामे बिनस, नामे सच समाए, नानक नाम गुरमति पाईए, आपे लय लवाए, ए वडाणी चाकरी पराजियो, तन छोड़ परदेस सिधाए, दूजे किने सुगना पायो पिराजियो, बिख्या लोभ लुभाए, बिख्या लोभ लुभाए परम फुलाए, ओ क्यों कर सुख पाए, चाकरी वडाणी खरी दुखाली, आप वेच तरम गवाए, माया बंधन टिके नाही, खिन खिन दुख संताए, नानक माया का दुख तवे चूके, जां गुरसबदी चितलाए, मानमुख मुद गवार पिराजियो, शब्द मन नाम साए, माया का परम अंध पिराजियो, हर मार्ग क्यों पाए, क्यों मार्ग पाए बिन सदगुर पाए, मनमुख आप गणाए, हर के चाकर सदा सुहेले, गुरचरणी चितलाए, जिसनु हर जियो करे कृपा, सदा हर के गुण गाए, नानक नाम रतन जग लाहा, गुरमुख आप बुझाए, राग गौड़ी शांत महला पंजवा।

एक बखाननो नानक एक अनेक पौड़ी ओं गुरमुखियो अकारा एक सूद परोवन हारा पिन पिन त्रैगुण विस्थारं निर्गुण ते सरगुण त्रिटारं सगल पाण कर करे उपायो जन्म मरण मनमोह बढ़ायो दू पाद ते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा श्लोक से सा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत ससो सत पुरख ते पिन न को तो सरन परे जे पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं संसय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप ताहू को जापत तो साधु ए पुंचन हारा नानक ताकै सद बलिहारा श्लोक तन तन खा पुकारते माया मोह सब कूर नाम बिहू ने नानका होत जा सब धूर पवड़ी तदा

पत्र कर पातो ज्ञानी सोए जाके दृढ़ सोउ कहत सुनत कस जोग न हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत संसर सब तक ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा थारी श्लोक आमन आए से तुम्हें बिन बूझे पल ठोर नानक गुरमुख सो बुझे जाके पाग मथोर पौड़ी या जुग में एक है को आया जन्म तुम होयो मोहनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास सिमरत प्रव रहते उर्ज परे सो छोड़ छिडाना देवन हार मने बिसराना तारो कृपा जिसे गुसाई एत उत नानक इस बिसरो नाही श्लोक आवत हुक्म विनाश हुक्म आज्ञा पिन ना कोय आमन जाना ते मिटे नानक दे मन सोए पौड़ी एओ जी बहुत गर्भ वासे मोह मगन मीड जोन वासे इन माया त्रैगुण बस कीने आपन मोह कटे खड़ दीने ए साजन काशप कहो उपाया जा ते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत संग मिलाए नानक ताके निट न माए श्लोक किरत कमामन शोभ।

कुसुम रंग बिरसोर नांग ते सरणी परो बिरस जाए मैं मोर पौड़ी रे मान बेनहार जह रचो तह तह बंधन पाघे जेब कदू ना छूटी है साकत त्यू कुमार।

एक नाम ले मने परो यैया जन्म नहारी है और पूरे की टेक नांग ते सुख पाया जाके हीरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे ई पूत के मीत गुरपूरे उपदेसया नानक जपिए नीत पौड़ी अनदिन सिमरो तास को जो अंत सहाई होए ए बिखिया दिन चार छे छाड़ चलो सब कोए ताको मात पिता सुतिया गृह बंता का संग न लिया ऐसी संच जो बिन सत नाही बासे ती अपने कर जाही सा संग काल कीर्तन गाया नानक ते बौर न आया श्लोक

जम मरे गर्भ जून दुख पाए मोह मगन लपट तरह आहो आवे जाए टहे पर टहे अब टहे परे साजना सरनाए दुखे फाहे काटे नानक लिए सुमाए।

हर हर नाम श्रवण जे सुनिया गुरमुख जे कट रहे समाई, नानक ते जन मिली वडाई। श्लोक नानक नाम नाम जब जपया, अंतर बाहर रंग गुर पूरे उपदेसया। नरक नाए सा संग पौड़ी, नन्ना नरक परे ते नाही। जाके मन तन नाम सही, नाम निधान गुरमुख जो जपते। बिख माया मैं ना ओए खपते, नन्ना कार न होता ताको। नाम अंतर गुर दीनो जाको, निद निधान हर अमृत पूरे। ते बाजे नानक अनघ तूरे, सरोक पतरा की गुर पार ब्रह्म।

दृष्टि आया उस्तद करण जोग पौड़ी खखा खरा सरा होता हु जो खिर में ऊने सुबर पराहु खरा निमाना होत परानी आनदन जापे प्रव निर्बानी पावे खसम ता उआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्सनहारा नानक साहेब सदा दयारा तलोक सत कहो सुन मान मेरे तरन परो हर राय उगत सियानप सगल त्याग नानक लय समाए पौड़ी ससा सियानप शाड एयाना हिकमत हुक्म ना प्रपतियाना सहज पाद करे चतराई संग तुहारे एक ना जाई सोऊ सोऊ जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक ताको दुख न व्यापे सलोक हर घर मुखते बोलना मन बूठे सुख होए नानक सब मै रब रहया शांत अनंतर सोए पौड़ी फेरो कड़ कड़ सगल कै पूर रहे भगवान होवते आए साध सदीव दुख भंजन गुर ज्ञान हों छुटके हुए आनंद ते हो नाही ते आप अते दुख जन्मे मरन संत संग प्रताप हित कर नाम दृढ़।

भगत जना कई मन बस राम रहाओ। प्रभ के सिमरन गर्भ न बस, प्रभ के सिमरन दुख जम नस, प्रभ के सिमरन काल पर हर, प्रभ के सिमरन दुश्मन टर, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लाग, प्रभ के सिमरन अन दिन जाग, प्रभ के सिमरन पौ न व्याप, प्रभ के सिमरन दुख न संताप, प्रभ का सिमरन साध के संग, सर्ब निधान नानक हर रंग, प्रभ के सिमरन हृद सिद्ध नव निध, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभ के सिमरन जब ता पूजा, प्रभ के सिमरन बिन से दूजा, प्रभ के सिमरन तीर्थ इस नानी, प्रभ के सिमरन तर्क है माननी, प्रभ के सिमरन हुए सो भला, प्रभ के सिमरन सुफल भला, से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए, प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभ के सिमरन उदरे मूचा, प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझ, प्रभ के सिमरन सबके सुज, प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा, प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदमाए सुमाए, प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरह से तनवंत, प्रभ को सिमरह से पुतवंत, प्रभ को सिमरह से जन परवान, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरह से बेमोताज, प्रभ को सिमरह से सर्व के राज, प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगे रवाला, प्रभ को सिमरह से पर उपकारी, प्रभ को सिमरह तिन सद बलिगारी, प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरह तिन रमल रीता, प्रभ को सिमरह तिन अंध कनेरे, प्रभ को सिमरह बसे हर नेरे, संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभ के सिमरन कार्य पूरे, प्रभ के सिमरन कभो ना चूरे, प्रभ के सिमरन हर गुरबानी, प्रभ के सिमरन सहे सुमानी, प्रभ के सिमरन नित्यलयासन, प्रभ के सिमरन कमल बेगासन, प्रभ के सिमरन अनहा चुनकार, सुप्रा सिमरन का अंत न पार, सिमरह से जन जिनको प्रमया, नानक तिन जन सरणी पया, हर सिमरन कर भगत पगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाय, हर सिमरन पहे सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नी चौकुंट जाते, हर सिमरन धारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आम निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, सलोक तीन दर्द दुख पंजना, घटघट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रसाथ अष्टपदी, जय मात पिता सुध मीत न पाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई, जय महा भयान दूध जम दलै, तै केवल नाम संग तेरे चलै, जय मुश्कल होवे अदपारी, हर को नाम खिर महे उधारी, अनक पुने चरण करतनी तरै, हर को नाम कोड़ पाप पर हर, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे, हर सेठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया, लाख करोरी बंधन पर, हर का नाम जपत निस्तर, अनक माया रंग तिघना बुझावे, हर का नाम जपत आघावे, जे मार्ग इहो जात अकेला, तै हर नाम संग हो सुहेला, ऐसा नाम मन सदा ते आईए, नानक गुरमुख परम गद पाईए, टूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत ते पार पराही, अनक विघ्न जय आए संघार, हर का नाम तत्काल उधार, अनक जून जन्म में मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हौ मैला मल कभू न थोवे, हर का नाम कोड़ पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइये साध के संग, जे मार के गणे जाए न कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा, जे पैंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहां पन तेरा को ना सुजानू, हर का नाम तय नाल पछानू, जय महा भयान तप्त बहु काम, तय हर के नाम की तुम्हें ऊपर शाम, जहां त्रिखा मन तुझ आकर्ष, तय नानक हर घर अमृत।

दिन रात हर हर औखद साध कुमात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन के बिरत विवेक हर का नाम जन को मुक्त जोत हर के नाम जन को तृप्त भूत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का पर न भंग हर का नाम जन की वड्याई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत

अंत सगल समग्री तुम रह सूत्र थारी, तुमते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गतमित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी सलोक, तेन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सो आए, नानक कहू न सीजई पिन नावे पद जाए, अष्टपदी तस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण विखोड़ गवावे, एक पी ना दे दस पी हिर ले, तो मूड़ा को खां करे, जे ठाकर सो ना ही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा, जाके मन लागा प्रा मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा, जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया, अगंत सो अपनी दे रास, खाद पीत बरते अंधे उलास, अपनी अमान कछ भौर साहो ले, अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बौर उसका विश्वास न होवे, जिसकी वस्तुत आज्ञा रखे, प्रभु की आज्ञा मान मत, उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहेब सदा दयाल, अनक पांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत, बिरख की छाया सो रंग लावे, ओ बिन से ओ मन पछतावे, जो दिसे सो चलनहार, लपट रहे होते अंध अंधार, बटाऊ स्यो जो लावे नेह, ताको हाथ न आवे केह, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाई, मिथ्या तन तान कुटुंब सुबाया, मिथ्या होमे ममता माया, मिथ्या राज जोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्त, मिथ्या त्रो मोह अभिमान, मिथ्या आपसी ऊपर करत गुमान, अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्प को हिर, मिथ्या नेत्र पेखत परत्र रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर्व कार को थावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तान नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास ले दिवकारा, बिन बूझे मिथ्या सा पए, सबल दे नानक हर हर नाम लय, बिरती सागत की आर्जा, साज बिना के होवत सूचा, बिरता नाम बिना तन अंध, मुख आवतता के दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बिरता बिहाय, मेघ बिना जो खेती जाय, गोविंद भजन बिन बिरते सब काम, ज्यो कृपन के निरार्थ दाम, तन तन ते जन जे कड़ बस्यो हरनाओ, नानक ताके बल बल जाओ, रहत अवर काश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत, जान नहार प्रभु परवीन, बार पेख न काहू पीन, अवर उपदेश आप न करे, आपत जावत जन्मय मरे, जिसके अंतर बसे निरंकार, जिसकी सीख तरे संसार, जो तुम पाने तिन प्रवजता, नानक उन जन चरण पराता, करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने, आपे आप करत नबेरा, किसे दूर जिनावत, किसे बुझावत नेरा, उपाव स्यान पर सगल

सह सुभाव ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मल जैसे मैल न लागे जल ब्रह्मज्ञानी कै मन होए परगास जैसे तर ऊपर आकाश ब्रह्मज्ञानी कै मित्र सत समान ब्रह्मज्ञानी कै नाही अवमान ब्रह्मज्ञानी ऊच ते ऊचा मन अपने के सब ते नीचा ब्रह्मज्ञानी से जन पय नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्मज्ञानी सगल कीरीना आत्मरस ब्रह्मज्ञानी तीना ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर मय ब्रह्मज्ञानी ते कछ बुरा न पय ब्रह्मज्ञानी सदा समंदर सी ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्मज्ञानी एक उपरयास ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी कै गरीबी समाह ब्रह्मज्ञानी परे उपकार्यो माह ब्रह्मज्ञानी कै नागी तंदा ब्रह्मज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्मज्ञानी कै होए सो फल ब्रह्मज्ञानी सोफल फल ब्रह्मज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्मज्ञानी जपे सगल संसार ब्रह्मज्ञानी कै एक कै रंग ब्रह्मज्ञानी कै बसे प्रसंग ब्रह्मज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्मज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्मज्ञानी सदा सजागत ब्रह्मज्ञानी अंगबोध त्यागत ब्रह्मज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्मज्ञानी कै घर सदा आनंद ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्मज्ञानी एक संहेता ब्रह्मज्ञानी कै होए अचिंत ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्मज्ञानी करे प्रव्याप ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्मज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्मज्ञानी कै सगल मन माहे ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्मज्ञानी का तथ्या न जाए अधाखेर ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्मज्ञानी सबसठ का करता ब्रह्मज्ञानी ता जीवे नहीं मरता ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुत जी का दाता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।

ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मंत्र नाम रते एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। ज्यों जल में जलया एक टाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभ के सद कुरबान। श्लोक सुखी बसे मस्कीनिया, आप निवार तले। बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले। अष्टपदी जिसके अंतर राज अब महान, तो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने मैं जो बनवंत, तो होवत विष्टा का जंत। आप को कर्मवंत कहावे, जन्म मरे बो जोन परमावे। तान पूम का जो करे गुमान, तो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक की खामुक्त आगे सुख पावे। तनवंता हुए कर गरबावे, तन समान का संग न जावे। बहु लश्कर मान ऊपर करे आस, पल पीतरता का हुए विनाश। तब ते आप जाने बलवंत, किन में हुए जाए पसमंत। किसे ना बदे आप अहंकारी, धर्म रायत करे खुवारी। गुर प्रसाद जाका मिटे अपमान, तो जन नानक दरगे परवान। कोड कर्म करे हो तारे, श्रम पावे सगले बिरतारे। अंक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार। अंक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगे को कैसे गवे। आस को जो पला कहावे, किसे पलाई निट न आवे। सर्व की रेन जाका मन होए, को नानक ताकी निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कश होए, तब सुख सुगुना ही कोए। जा ए जाने मैं किस करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग नह चलना ही चीत। जब लग मो मग्न संग माए, तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे। सहज कटे लग तो उड़तावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनक भोग बिखिया के करे, ने तृप्तावे खप खप मरे। बिना संतोख नहीं को राज, स्वपन मनोरथ बिरथे सब काज। नाम रंग सर्व सुखोय, बड़भागी किसे प्राप्त होए। करन करामने आपे आप, सदा सदा नानक।

तेन पुरुष का उत्तम कर्मान योगज करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुपय होवे सो होए करणे गार पछाणे सोए प्रभु का किया जन्म मीठ लगाना जैसा सा तैसा त्रिटाना जेते उजे तुमाए सुमाए ओ सुख निदान उनहू बने आए आस को अवधि नो मान नानक प्रभ जन एको जान। श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जाननहार जाके सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गंढ नहार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन मागे तिस ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा।

रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक की रखे निरंकार सो सेवक जे दया प्रवतार नानक सो सेवक सास सास सुमार अपने जन का पर्दा ढक अपने सेवक की सर पर रख अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रख ताकि गत मित कोई ना लख प्रभ के सेवक को ना पहुंचे प्रभ के सेवक ऊचते ऊचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दहत से प्रगटाया निकी कीरी मैं कल रख पसम करे लस्कर कोट लख जिसका साधन काटते आप ताको राखत दे कर हाथ मानस जतन कर्तव पात जिसके कर्तव्य व्यर्थे जात मारे ना रखे अवर न कोय सर्व जिया का रखा सोय काहे सोच कर हे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपिए ई अमृत यो मन तन त्रपिए नामृत जिन गुरमुख पाया तिस किश अवर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिवतान ने मर्तन नामे नाम सुमा।

हर का नाम ले सच उपदेश सेवक कौ दे वो माया के संग न लेप मन में रख हर हर एक अंधकार दीपक परगस नानक परम मोह दुखते ते नस तब तुम्हें ठांड वरताई अंध पया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेस साधु के पूर्ण उपदेश पाओ चूका निरप होए बसे सगल ब्याद मनते खे नस्से

निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला तार जिन सगली मोही अपने चित्त प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोय ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कलतारी अनकबार नानक बलिहारी श्लोक साधना चले बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कुमावना नानक यो तनसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव समीत बसारो चरण कमल हृदमय उरतारो करण कर्ण सो प्रसमरथ दृढ़ कर गहो नाम घर वथ यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्व रोग नारक मिट जाहे ये तन को चार कुण टुड़तावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सो कोवनत बाछे मीत सो सो साधु संग परीत जे सोभा को करे पली करनी सा सोभा पज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवख दलाए सर्वन धान मै हर नाम धान जप नानक दरगह परवान मन पर बुद्ध हर कै नाए दस ताव त्या बैठाए ताको बिगन ना लागे कोय जा कर दे बसे घर सोए कल ताती ठंडा घर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भव बिन से पूर्ण हो आस भगत पाया तुम परगास जित कर जाए बसे अविनाशी

त्यों संतो निर्मल होए, गुरमुख गुण में हाजिए मलहो में कड्डे तोय, सच वणन जय रंग स्यो सच सौदा होय, टूटा मूल न आवई लहार पावे सोय, नानक तिन सच वणन जया जिन्ना तुर लिखिया प्राप्त होए, पौड़ी साराई सच सालाना स सच्चा पुरख निराले, सच सेवी सच मनवसे स सच्चा हरख वाले, स सच्चा जिनी अराध्या थे जाय रले सच नाले, स सच्चा जिनी ना सेवया थे मनमुख भूड़ बिताले, ओ आल पताल मोह बोल दे ज्यों पीते मद मतवाले,

लोभ मोह संग साधा पखे पर कृपा प्रवे अपनी हर आप परखे नानक चलत न जापनी ओ सके न लखे सलोक महला पंजवा नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रवे आवे चित जित देन विसरे पार ब्रह्म हिट पलेरी रुत महला पंजवा नानक मित्राई ते स्यों सब के

केवल राम। गौड़ी कबीर जी, नगन फिरत जाओ पाई है जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग, क्या नांगे क्या बाधे चाम, जब नहीं चीन सयात्म राम, हरहाओ मूड मुडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गई आकाई, बिंद राख जाओ तरिये पाई, खुसरे क्यों ना परमगत पाई, कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बेन किन गद पाई। गौड़ी कबीर जी, संध्या प्रात स्नान कराही, ज्यो पै दादर पानी माही, जाओ पै राम राम रत नाही, के सब धर्म राय कै जाही रहाओ, काया रत बहु रूपर चाही, तिन को दया सुपने पी नाही, चार चरण कह बहु अगर, साधु सुपावे कल सागर, कहो कबीर बहु काय करीजै, सर्ब छोट महारस पीजै, कबीर जी गौड़ी क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जा कर दे पाओ है दूजा, रे जन मन माधव स्यों लाई है, चतराई ना चतर पुज पाई है रहाओ, पर हर लोभ हर लोकाचार, पर हर काम क्रोध अहंकार, कर्म करत बदे अमेव, मिल पाथर की कर ही सेव, कहो कबीर भगत कर पाया, ओले पाए मिले राग राया। गौड़ी कबीर जी, गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिन ते सब उत्पाती,

सो जल निर्मल कथत कबीर गौड़ी कबीर जी। जे कुल पूतना ज्ञान बिचारी विधवा कसना पई महतारी। जे नर राम भगत ने साधी जन्मत कसना मोह अपराधी। रहाओ मोच मुच गर्व गए कीन बचया बुढ़ पुज रूप जीवे जग मजया। कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप।

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन पावे रहाओ, जे कड़ राम रहया भरपूर, तिन की पाग।

दुख आगे आवे, सो सुख हमो ना मांगया पावे। बिखिया अजो सुत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुखते से ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साज कर जाना। संकादक नारद मुन सेखा, तिन पी तर मैं मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खुद जो पाई, ता छूटे मन कहां सुमाई। गुर प्रसादी जय दो नामा, भगत के प्रेम इन ही है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साज पछाना। इस मन को रूप नारे क्या काई, हुक्मे होया हुक्म बूझ सुमाई। इस मन का कोई जाने पेओ, ए मनलीन पय सुख देओ। जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को रव रहे कबीरा। गौड़ी गुवारेरी आहे निस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध पय लिव लागे। रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तरतारे। जो हर हरे सो होए न आना, कहे कबीर राम नाम पछाना। गौड़ी पी सोठ पी, रे जी न लज लाज तोय नाही। हर ताज कद काहू के जाही। रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई, सो जान पर कर जातन सोही। सो साहेब रहया पर पूर, सदा संग नाही हर।

निंदै जे गंगा आनी, बैठत उड़त कुटलता चाले, आप गए और नहुं काले, शाड़ को चर्चा आन न जाने, ब्रह्मा हूं को कयो न माने, आप गए और नहुं खोवे, आग लगाए मंदिर में सोवे, आवर नभस्त आप है काने, तिनको देख कबीर ले जाने, राग गौड़ी बैरागण कबीर जी एक ओंकार, सदगुर प्रसाद जीवत पितर ना माने को, मुए सराध कराही पितर पी बपरे को क्यों पावे, कौआ कुकर खाही मोको कुशल बतावो कोई, कुशल कुशल करते जग बिनसे।

कहिए आपन कया ना लेगी। सर जियो काटे निर्जियो पूजे अंतकाल को पारी। राम नाम की गत नहीं जानी पै डूबे संसारी। देवी देवा पूजे डोले पार ब्रह्म नहीं जाना। कैत कबीर अकुल नहीं चेतया बिखिया सो लबटाना। गौड़ी जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन सुमाया। अंजन माए नरंजन रहिए बौड़ न पव जल पाया। मेरे राम ऐसा खीर बुलोइए गुरमत मनुआ अस्तर राखो। इन बिद अमृत पीओई है रखाओ। गुर के बाण बज्र कल शेदी प्रगटया पद परगासा। सगत अंधेर जेवड़ी प्रचूका नेचल शिव कर बासा। तेन बिन बाणे तनख चढ़ाइए यो जग बेद्या पाई। दैत्य बूढ़ी पवन चुलावे डोर रखी लिवलाई। उन मन मनुआ सुन सुमाना दुबदा दुर्मत पागी। कहो कबीर अनपो एक देखेया राम नाम लिवलागी। गौड़ी बैरागन तेप दे उल्ट पवन चक्कर खड पेदे। सुरत सुन अनरागी आवे ना जाए मरे ना जीवे तास खोज बैरागी। मेरे मान मन ही उल्ट सुमाना गुर प्रसाद अगल पई अवरे। ना तरथा बेगाना रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे। जिन जैसा कर मानिया अलौती का जैसे पया बरेडा। जिन पिया तिन जानिया तेरी निर्गुण कथा काए स्यो कहिए। ऐसा कोए बबेकी कहो कबीर जिन दिया पलीता। तिन तैसी चल देखी गौड़ी ते पावस सिंध तूप नहीं सहिया। ते उत्पत परलो नाही जीवन मृत ना दो सुब्यापे। सुन समाद दो ते नाही सहज की अकथ कथा है।

गयो मन बौरारे, माया यो व्यवहार, जैसा रंग सुंभ का मन बौरारे, त्यों पसरियो पासार। नावन को तीर्थ करे मन बौरारे, पूजन को बो देव कहो कबीर, छूट नहीं मन बौरारे, टूटन घर की सेव गौड़ी, अग्न न दहे पवन नहीं मगन, तस्कर नेर न आवे, राम नाम तन कर संचौनी, सो तन कथी न जावे, हमारा तन माधो गोविंद तरणी तार, ए सार तन कही है, जो सो प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लई है, हरहाओ इस तन कारण से संकादक, खोज पै उदासी, मन मुकंद जे बा नारायण, परे न जम की फासी, निज तन ज्ञान पद गुरदीनी, तास सुमत मन लागा, जलत अम्ब थम मन तावत, परम बंधन पो पग, कहे कबीर मदन के माते, हृदय देख बिचारी, तुम कर लाख कोट असभस्ती, हम कर एक मुरारी, गौड़ी ज्यों कब के कर मुष्ट चरण की, लुब्धना त्याग दयो, जो जो कर्म किए लालच स्यों, ते फिर गरे परे हो, भगत बेन बिरथे जन्म गयो, साध संगत भगवान भजन बेन, कही ना सच रहो रहाओ, ज्यों उद्यान कुसुम प्रफुल्लत, किने ना कराओ लयो, तैसे प्रमत अनेक जोन में, फिर काल हयो, या तान जोबन आर सुधारा, पेखन को जो दयो, तिन ही माह अर्घ जो उर्जे, इंद्री प्रेर लयो, औध अनल तन तिन को मंदर, चौध ठाट ठयो, कहे कबीर ऐसागर तरण को, मैं सदगुर ओट लयो, गौड़ी पानी।

इस माटी में पवन सुमाया, झूठा प्रपंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी, कहे कबीर एक नीव सारी, खिन में बिनस जाए अंकारी गौड़ी। राम जपो जी ऐसे ऐसे, त्रू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, दीन दयाल परोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, रहाओ जत पावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चुग गई फिर आमन जानी, कहो कबीर भज सारंग पानी, पुरवार पार सब एको दानी, गौड़ी नावी जोन छाड़, जो जग में आयो लागत पवन खसुम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रखाओ, गर्भ जो में उर तब करता, तो जठर अग्न में रहता, लगत रसी जोन प्रमे आयो, अब के शुड़के ठौर नट आयो, कहो कबीर पर सार्ग पानी, आर्त जिसे जात न जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्गवास ना बाची है, डरकिन नरक निवास, होना है सो होई है, मने न की जे आस, रमैया गुण गाइये, जाते पाइये परमन धान रखाओ, क्या जप क्या तव संजमो, क्या व्रत क्या स्नान, जब लग जूत न जानिए, पाओ भगत भगवान, संपे देख न हरखिए, विपत देख न रोए, जो संपे त्यो विपत है, विद ने रचिया सो होए, कहे कबीर अब जानिया, संतन हृदय मजार, सेवक सो सेवा पले, जे कड़ बसे मुरार, गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को, तैसो यो संसार, राम रस पिया रे, जे रस बिसर गए रस और रखाओ, और मुए क्या रोई है, जो आपा थिर ना रहाए, जो उपजे सो बिनस है, तो का रोवे बलाए, जय की उपजी तै रची, पीवत मर्दन लाग, तय कबीर किद चेतया, आराम सिमर बैराग, राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी, लोचन परी ले उसासा, और ना पीजे पग ना खिसे, हर दर्शन की आसा, उड़ो ना कागा कारे, बेग मलीजे अपने राम प्यारे रहो, कहे कबीर जीवन पद कारण, हर की पगत करीजे, एक आधार नाम नारायण, रसना राम रवीजे, राग गौड़ी ग्यारहवीं, आस पास कण तुरसी का बिरवा, माज बनारस गाऊ रे, हुआ का स्वरूप देख मुई ग्वारन, मोको छोड़ न आऊ न जाहू रे, तुहे चरण मन लागो सारंग तार, सो मिले जो बड़ भागो रघाओ, बिंद्राबान महरन मनोर, कृष्ण चिरावत गाऊ रे, जाका ठाकुर तुई सारंग तार, मोहे कबीरा नाऊ रे, गौड़ी पूर्वी बारहवीं, बेपल बस्तर केते हैं पैरे, क्या मन बदे बस, कहां पया नर देवा धोखे, क्या जल बोरे ज्ञाता, जियरे जाएगा मैं जाना, आगत समझ ए आना, जब जब देखो बौर ना पेखो, संग माया लपटा ना रखाओ, ज्ञानी त्यानी ब उपदेसी, यो जग सुग लो तंदा, कहे कबीर एक राम नाम बेन, या जग माया अंधा, गौड़ी बारहवीं मारे छाडो परम, पलट होए नाचो, या माया के डांडे, सूर के सनमुख रन ते डर पे, सती के सांचे फांडे, डग मग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद पाइये, लीनो हाथ संधौरा रहाओ, काम क्रोध माया के लीने, या फिर जगत बिगूता, कहे कबीर राजा राम न छोड़ो, सगल ऊंच ते ऊंचा गौड़ी तेरहवीं, फुरमान तेरा सिरे ऊपर, फिर न करत भी चार, तुही दरिया तुही करिया, तुझे ते निस्तार, बंदे बंदगी एक तैयार, साहिब रोस तरो के प्यार, नाम तेरा आधार मेरा।

भगत हेत अवतार लियो हो। आग बड़ो बपरा कोरे, तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे। तरन आकाश दसो दसनाही, तब ओ नंद कहां थोरे रहाओ। संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे। कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जा के माई ना बापोरे। गौड़ी

ना बैकुंठ जाइए, ना पदार्थ मने बसाइए। हृदय सुजो निंदा होए, हमरे कपड़े निंदक तोए। निंदा करे सो हमारा मीत, निंदक माए हमारा चीत। निंदक सोजो निंदा हो रे, हमारा जीवन निंदक लो रे। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमारा करे उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरभव, तरन तारन राम राया हरहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक पय है, एक के देखत मन पतियाही। जब बुध होती तब बल कैसा, अब बुध बल ना खटाई। कहे कबीर बुध हर ली मेरी, बुध बदली सिद्ध पाई गौड़ी। खट नेम कर कोठड़ी बंधी, बस अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्प प्राण कर राखे, करते बार न लाई। अब मान जागत हो रे पाई, गाफल हुए के जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ, पंच पैरुआ दर में रहते। इनका नहीं पतियारा, चेत सुचेत चेत हुए रहो। तौले प्रगास उजारा, नाव कर देख जो कामन पूली। बस अनूप न पाई, कैत कबीर नवे कर मुसे। दसवें तत् सुमाई गौड़ी, माई मुहे अवर ना जान्यो आना ना। थे सुनकाद जस गुण गावे, तस बसे मोरे प्राणा ना। रहाओ हृदय प्रगास ज्ञान गुरगमत, गगन मंडल में ध्याना ना। बिखे रोग पय बंधन पागे, मनज कर सुख जाना ना। एक सुमत्रत जान मान प्राप्त, दूसर मने ना आना ना। चंद्र बाज पय मन बासन, त्या कट्यो अब माना ना। जो जन गाये त्याय ठाकुर, तास प्रभु है थाना ना। ते बड़पा बस्यो मन जाके, कर्म प्रधान मथाना ना। काड़ सकत शिव सह प्रगास्यो, एक एक समाना ना। कहे कबीर गुर पेट महासुख, परम तरह मन माना।

अक्षर लो त्रै सब कुछ इन की मा गए ए अखर खिर जाएंगे ओए अखर इन मैं ना गए जा बोलते अक्षर आवा जय अबोल तय मन ना रखावा बोल अबोल मद है सोई जस ओ है तस लखे ना कोई अले लहो तो क्या कहो खो ता को उपकार बड़क बीज मैं रव रहे हो जाको तीन लोग विस्तार अले लहंता पेद शय कश कह पायो भेद उल्ट भेद मन भेदयो पायो अपंग अछेद तुरक तरीक तजानिए हिंदू वेद पुराण मन समझावन कारण कशुक पढ़िए ज्ञान ओंकार आदमय जाना लिखर मेटे ताए न माना ओंकार लखे जो कोई सोई लख मिटना ना होई कक्का किरण कमल में पावा सद विकास संपट नहीं आवा हर जे तह कुछ मरस पावा आके कहा कह का समझावा खखा ए खोड़ मन आवा खोड़े शाड़ ना दैद सतावा खसमे जान खिमा का रहे तो होए नख्याओ अखे पदल है गग्गा गुर के भजन पछाना दूजी बात न तरई काना रहे बेहंगम कते ना जाई आगे गहे गह गगन रखाई तग्गा काट काट निमसे सोई काट फूटे कट कभे न होई ता कट माहे।

आज करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंभ, अहिर अखंड सो रही जाए, तो अनहद बेण सहज मय बाय, सोमवार सज अमृत चरे, त्यागत बेग सगल बिखरे।

कर छोड़े बार जिन जाए ना तरखरा रिसे गैराए बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल में हर का वास गुर मिल दो एक सम तरे उर्द पंकले सूदा करे बृहस्पति दिखिया देव बिहाय तीन देव एक संगलाए तीन नदी ते त्रिगुटी नागे अंस कसमल तो वे नागे सुकृत सहारे तो ए व्रत चढ़े अंत ने आप आप स्यों लड़े सुरखी पंचो राखे सब तो दूजी दृष्टना पैसे कबे थावर थिर कर राखे सोए जोत दी वट्टी कड़ में जोए बाहर पीतर पया परगास तब हुआ सगल कर्म का नास जावला कट में दूजी आन तौलो महल ना लाभे जान रमत राम स्यों लागो रंग कहे कबीर ता निर्मल अंग राग गौड़ी चेती बाणी नाम दियो जियो की एक ओंकार सदगुर प्रसाद देवा पान तारियले राम कहत जन कसना तरे रघाओ तारियले गनका बिन रूप कुबजा ब्याल अजामल तारियले चरण बदक जन तेऊ मुक्त पहे औ बल बल जिन राम कहे दासी सो जन बिद्र सुदामा उग्रसैन को राज दिए जापहीन तपहीन कोलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी तेऊ तरे राग गौड़ी रविदास जी के पदे गौड़ी गुवारेरी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोत सोज दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुपांती राम गुसैया जी के जीवना मोहे नाम सारो मैं जन तेरा रहाओ मेरी हरो विपत जन करो सुपाई चरण ना छाडो शरीर कल जाई कौर वदास परो तेरी सांबा बेग मिलो जन करना बिलंबा बेगमपुरा सहर को नाओ दुख अंधो नहीं तेठाओ ना तस्वीस खिराज ना माल खौफ ना खता न तरस जवाल आ मैं खूबतन गए पाई ऊहा खैर सदा मेरे भाई रहाओ कायम दायम सदा पातशाही दो मना सेम एक सो आही आबा दान सदा मशहूर ऊहा गनी बसे मामूर त्यों त्यों सैर करे जो पावे महरम मैल न को अटकावे कह रविदास खरा चुमारा जो हम सहरी सो मीत हमारा एक ओंकार सदगुर प्रसाद गौड़ी बैरागन रविदास जियो काट आव काट डूगर कणा एक निर्गुण पैल हमार परमैये सो एक बेन।

सो को न कह समझाए, जाते आवा गम बिलाए। रहाओ बौद्ध धर्म न रूपी है, करता दिसे सब लोए। कम कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म बिचारी है, संका सुन वेद पुराण। संसा साध हिरदे बसे, कौन खेरे अवमान। बार उदक पखारिये, कर पीतर बेबद बेकार। सुध कमन पर होए बो, सुज कुंचर बेद व्यवहार। राव प्रगास रजनी जसा गत, जांत सब संसार। पारस मानो तांबो छोए, कनक होत नहीं बार। परम परस गुर पेटिए, पूर्व लिखत ललाट। उन मन मान मन की मिले, छुटकत बज्र कपाट। भगत जुगत मत सत करी, प्रबंधन काट बेकार। सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार। अनक जतन निग्रह किए, तारी न टरे परम फास। प्रेम भगत नहीं उपजे, ताते रविदास उदास। एक ओंकार सत नाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त। अजूनी सह पंग गुर प्रसाद, राग अस महला पहला। कर पहला सोदर, सो दर तेरा केह, सो कर केह। जित बै सर्व संभाले, वाजे तेरे नाद अनेके संख।

मन वसे आए, नदर करे ता सदगुर मिले, परमत नानक पोजल तर आसा मगला पहला पंच बदे दुध बिन तेन पंख बिन पंखी जल बिन उदबुज कामना ही क्या सुल्तान सलाम विहूणा अंधी कोठी तेरा नाम नाही की विसर दुख बहुता लागे दुख लागे तू विसर नाही हरहाओ अखी अंध जीव रस नाही कन्नी पौन ना वाजे चरणी चले पजूता आगे विण सेवा फल लागे अखर देख बाग पे चोखी सिंचित पाओ करेगी सबना फल लागे नाम एको बिन कर्मा कैसे लेगी जेते जी तेते सब तेरे विण सेवा फल किसे नाही दुख सुख पाना तेरा होवे विण नावे जियो रहे नाही मत विच मरण जीवन होर कैसा जा जीवा ता जूत नाही कहे नानक जीवाले जिया जय पावे हे राख तुही आसा महला पहला काया ब्रह्मा मन है तोती ज्ञान जनेऊ ध्यान कुछ पाती हर नामा जाजा चौनाओ गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ पांडे ऐसा ब्रह्म विचार नामे सोच नामो पढ़ो नामे चज आचार रखाओ बार जनेऊ जिचिर जोत है नाल तोती टिक्का नाम सुमाल ऐथे ओथे निभगी नाल विण नावे होर कर्म ना पाल पूजा प्रेम माया परजाल एको वेखो अवर न पाल इन्ने तत गगन दा द्वार हर मुख पाड़ पड़े विचार भोजन पाओ परम पाओ पागे पारू रश विचोर न लागे तिलक ललाट जाने प्रावेक बूझे ब्रह्म अंतर बवेक आचारी नहीं जीत्या जाए पाड़ पड़े नहीं कीमत पाए अष्टदशी चौपेद न पाया नानक सदगुर ब्रह्म दिखाया आसा महला पहला सेवक दास भगत जन सोई ठाकुर का दास गुरमुख होई जिन सिर साजी तिन फुन गोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई साच

सच्चे तख्त बुलावे सोए, देवड़ियाई करे सो होए, तेरा तान तू है दी बाण, गुर का शब्द सच निशान, मन ने हुक्म सो प्रगट जाए, सच निशाने ठाक न पाए, पंडित पढ़े वखाने वेद, अंतर अवस्त न जाने भेद, गुरबिन सूझी बूझ न होए, साचा रवर या प्रसोए, क्या हो अख अख वखाणी, तू आपे जाने सर्व वडाणी, नानक एको दर दी बाण, गुरमुख साजता गुजरान, आसा महला पहला, काची गागर दे दुहेली, उपजे बिनसे दुख पाई, यो जग सागर दुत्र क्यों तरिये, बिन हर गुर पार न पाई, तुझ बिन अवर न कोई मेरे प्यारे, तुझ बिन अवर न कोई हरे, सर्बी रंगी रूपी तू है, तेस बगसे जिसे नदर करे रखाओ, सास बुरी कर वास न देवे, फिर स्यों मिलन न दे बुरी, सखी सजनी केखो चरण सरेव, हर गुर कृपा ते नदर तरी, आ विचार मार मन देखया, तुम समीत न अवर कोई, ज्यों तू रख तिबगी रहना, दो सुख देवे करे सोई, आसा मनसा दो बिनास्त, त्रिगुण आसन रास पई, तुरी अवस्था गुरमुख पाई है, संत सभा की ओट लगी, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप, जिस हर हृदय अलख पेव, नानक राम नाम मन रत, गुरमत पाए सहज सेवा, आसा महला पहला, पंच पदे मोह कुटुंब मोह सवकार, मोह तुम तजो सगल वेकार, मोह अर परम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवे शरीर, रहाओ सच नाम जा नवन दपाई, रोवे पूतना कल पैमाई, एत मुए डूबा संसार, गुरम कोई उतरे पार, एत मुए फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जम पुर जाहे, गुर दिखिया ले जब तब कुमागे, ना मो टूटे न थाए पाहे, नदर करे ता यो मो जाए, नानक हर्षों रह सुमाए, आसा महला पहला, आप करे सच अलख पार, हो पापी तू बख्शन हार, तेरा पाना सब किश होवे, मन हड़ कीते अंत गोवे रखाओ, मन मुकी मत कूड़ में आपी, बिन ख सिमरन पाव संतापी, दुर्म त्याग ला किश लेवो, जो उपजे सो अलख पेवो, ऐसा हमारा सखा सखाई, गुर घर मिलया पगत दृढ़ाई, सगली संधी तोटा आवे, नानक राम नाम मन पावे, आसा महला पहला चौप दे, विद्या विचारी ता पर पुकारी, जा पंच रासी ता तीर्थ वासी, घुंगरू वाजे जे मन लागे, तौ जम कहां करे, मोस आगे रहाओ, आसन रासी तौ सुनियासी, जा जय जोगी ता काया भोगी, दया दिगंबर दे विचारी, आप मरे अवरा नय मारी, एक तू होर वेस बो तेरे, नानक जाने चोज न तेरे, आसा महला पहला, एक न परियां गुण कर तोवा, मेरा सो जाग हो निस पर सोवा, यों क्यों कंत प्यारी होवा, सो जाग हो निस पर सोवा, रहाओ आस प्यासी से जे आवा, आगे से पावा के न पावा, क्या जानना क्या होए गारी माई, हर दर्शन बिन रहन ना जाई, रहाओ प्रेम ना चाखिया मेरी तिसना बुझानी, गैसो जोगन तन पछतानी, अस जागो आस प्यासी, पहले उदासी रहो निरासी, रहाओ हो मैं खोए करी सी गार, तो कामन सेजे रवे पतार, तो नानक कंते मन पावे, छोड़ वड़ाई अपने खदम सुमावे, रहाओ आसा महला पहला, पेव कड़े तन खरी इयानी, ते सैकी में सार न जानी, सौ मेरा एक दूजा नहीं कोई, नदर करे मेलावा होई, रहाओ सौ रड़े तन साज पछाणिया, सह सुपाए अपना फिर जानिया।

मन वासे थिर ना रहे जैसे पवे उदासे मन मेरा दयाल सेती थिर ना रहे लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधक लगे हरहाओ फूल माला गल पैरो गीगारो मिलेगा प्रीतम तब करो गीसी गारो पांच सखी हम एक पतारो पेड़ लगी है जीड़ा चालन गारो पांच सखी मिल दुन करेगा सौ पजूता प्रणत नानक लेखा देख एक ओंकार सदगुर प्रसाद आसा कर सेवा महला पहला मन मोती दे गहना होवे पौन होवे सूत तारी खिमा सीगार कामन तन पैर रावे लाल प्यारी लाल बहुगुण कामन मोगी तेरे गुण होए न अबरी रहाओ हर घर घर कंटले पैर दामोदर दंत ले कर कर करता कंगन पैर इन चित तेरे मासूदन करमुंदरी पैर परमेश्वर पट ले तीरज तड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदिर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राओ जब सेजे आवे ता नानक भोग करे आसा महला पहला कीता होवे करे कराया क्या कहिए पाई जो कुछ करना सो कराया कीते क्या चितराई तेरा हुकुम पला तु पावे नानक ताको मिले वडाई साचे नाम सुमावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बहुत हुक्म ना होई जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सके कोई।

तू सब नाका सोई, जे सकता सकते को मारे ता मन रोस न होई। हरहाओ सकता सियो मारे पै वग कसमे सा पुरसाई, रतन विगाड़ भगोए कुत्ती मोया सार नकाई। आपे जोड़ विछोड़े आपे वेख तेरी वड्याई, जे को नाव तराए वड्डा साध करे मन पाणे। खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने, मर मर जीवे ता किस पाए नानक नाम खाने। अराग आसा कर दूजा महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर दर्शन पावे वडपाग गुर के शब्द सच्चे बैराग, खड़ दर्शन वरते वरतार गुर का दर्शन अगमे पार। गुर के दर्शन मुक्त गद होए साचा आप वसे मन सोए, रहाओ गुर दर्शन उदरे संसार।

सोई जन जाने, हर गुण सदगी आख वखाने, जिन घर सेवया तिन सुख पाया, सहजेगी घर नाम सुमाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुध बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेख जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। एक ओंकार सदगुर प्रसाद, राग आसा कर दूजा महला चौथा, किसी तड़ा किया मित्र सुत नाल पाई, किसी तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई, किसी तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुवाई, हमारा तड़ा रहया सुनाई, हम हरसो तड़ा किया मेरी हर टेक, मैं हर दिन पख तड़ा अवर ना कोई, हों हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ, जिनसो तड़े करे से जागे, चूड़ तड़े कर पछोतागे, फिर ना रह मन खोड़ कुमागे, हम हरसो तड़ा किया इसका कोई समर्थ ना है, ये सब तड़े माया मो पसारी, माया को लूजे गावारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी, कलयुग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान में जाए, जिसनु कृपा करे तेस सत्संग मिलाए, हमारा हर तड़ा जिन ए तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ तड़े बे पावे, पराया शिद्र अटकल है अपना अहंकार बदावे, जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तड़ा धर्म।

को आया वस्त अनूप सुनी लाभाया गुण रास बन पल्ले आनी देख रतन ओ मल बटानी सहा व्यापारी द्वारे आए वखर काढ़ो सौदा कराए रहाओ सहे पठाया सहे पास अमोल रतन अमोला रास विट सुभा।

भाग हो मारो अब हुन सोयो, कंत मिलियो मेरो सब दुख जोयो, आंगन मेरे शोभा चंद, निसबसर प्रिय संग आनंद, बस्तर हमारे रंग चलूल, सगल अपर्ण शोभा कंठ फूल, प्रे पेखी दिष्ट पाए सगल निधान, दुष्ट दूत की चूकी कान, सद खुशियां सदा रंग माने,

मोको कभू ना बिगावे, दर्शन की मन आस कनेरी, कोई ऐसा संत मोको पिरे मिलावे। हरहाओ यार पैर क्यो जुगे सुमाने, रैन पई तब अंत न जाने, पांच दूत मिल पिरो विछोड़ी, ब्राह्मण रोवे हाथ पछोड़ी, जन नानक को हर दर्श।

जल नहीं डूबे संग छोड़ कर कतो ना जाई रहाओ टोट ना आवे निखुट ना जाए खाए खर्च मन रह अघाए सो सच साहो जिस कर हर तन संचाना इस तन ते सब जग बरसाना तिन हर तन पाया जिस पुरबल के का लेना जन नानक अंतवार नाम गहना आसा मोहल्ला पंजवा जैसे किसान बोवे किसानी काची पाकी बाढ़ परानी जो जन्मे तो जन हो मुआ गोविंद भगत अस्तर है थिया रहाओ जिनते सर पर पौसी रात रहन गई फिर हुए प्रभात माया मोहे तो रहे अपागे गुर प्रसाद को विरला जागे कहो नानक गुण गई है नीत मुख उज्जल हो निर्मल चीत आसा महला पंजवा नौनद तेरे सगल ने।

रब रहे आप सबके साथ, पूरा गोर पूरी बंत बनाई, नानक भगत मिली वड्याई। आसा महला पंजवा, गुर के शब्द बनावो इहो मन, गुर कर दर्शन संचो हर तन,

मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत पद केवल नाम सरंग जामला पवजल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै हरहाव जब तब संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जान हर राया कहो नानक हम नीज करमा सरण परे की राखो शर्मा आसा महला पंजवा कुछ बिन अवर नही मैं दूजा तू मेरे मन माही तू साजन संगी प्रा मेरा ताहे जी डराही तुमरी ओट तुम्हारी आसा बैठत उठत सोवत जागत विसर नहीं तू सास गिरासा रहाओ राख राख शरण प्रव्यापनी अग्न सागर वे कराला नानक के सुख दाते सदगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा महला पंजवा हर जन लीने प्रभु छिडाए प्रीतम स्यों मेरो मन।

साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा मोहल्ला पंजवा, काम क्रोध माया मद मस्तर, ए खेलत सब जुए हारे। सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने गृह पीतर वारे। जन्म मरण चूके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल। गुर पूरे लेखिन में तारे, रहाओ सबकी रेन होए रे मनुआ। सगले दिसे मीत प्यारे, सब मध्य रव्या मेरा ठाकुर। दान देत सब जी सम्हारे, एको एक आप एक एक, एक एक सगला पासारे। जप जप होए सगल साध जन, एक नाम तै बहुत उधारे। गैर गंभीर बेंत गुसाई, अंत नहीं किस पारा वारे। तुमरी कृपा ते गुण गावे, नानक त्याए तै प्रभु को नमस्कारे। आसा महला पंजवा, तू बेअंत अवगत अगोचर। यो सब तेरा आकार, क्या हम जंत करे चतराई। जहाँ सब

पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े कर्म धर्म जुगत बो करता करणे सार न जाने उपदेश करे आप ना कमावे तत शब्द ना पछाने नांगा आया ना गोजासी।

नहीं दर गए टोई, जम पुर जाए पचावे, निंदक ऐ ला जन्म गवाया, पहुंच न सके काहू बाते, आगे ठौर न पाया, रहाओ किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा, तहां बेगूता ते कोई न रखे, ओ किस पे करे बुकारा, निंद की गत तथू नागी, खसमे ए वे पाना, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना, संतन टेक तुम्हारी स्वामी, तू संतन का सगाई, कहो नानक संत खरा रखे, निंदक दिगे रोढ़ाई, आसा मोहल्ला पंजवा, बाहर तोय अंतर मल मैला, दोए ठौर अपने खोए, ईहा काम क्रोध मुए व्यापया, आगे मुस मुस रोए, गोंद पजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप ना मरी, नाम न सोई डोरा, रहाओ माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्र कहो तरकन लागा, तत जोग ना पछाने, उगर गया जैसे खोटा टबुआ, नदर सरापा आया, अंतर जामी सब के जाने, उसते कांश पाया, कूड़ कपट बांच ने मुनियादा, बिनस गया तद काले, सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले, आसा महला पंजवा, उदम करत होवे मन निर्मल, नाचे आप निवारे, पंच जनाले वस गद रख, मन में एक अंकारे, तेरा जान नृत करे गुण गावे, रबाब पखावज ताल कुंगुरु, अनगद शब्द वजावे रखाओ, प्रथमे मन पर बोधे अपना, पाछे अवर री जावे, राम नाम जप हृदय जप, मुक्ते सगल सुनावे, तर संग साधु चरण पखारे, संत तूर तन लावे, मन तन अर्प तरे गुर आगे, सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पेखे लै सरदा, ताका जन्म मरण दुख पागे, ऐसी निरत नरक निवारे, नानक गुरमुख जागे, आसा महला पंजवा, अदम चंडाली पई ब्रह्मणी, सूदी ते सृष्टाई रे, पाताली आकाशी सखनी, लै बरबूजी खाई रे, घर की बलाई अबर सखाई, मूसा देख डराई रे, अज के वसगुर कीनो केहर, कुकर तने लगाई रे, रहाओ बाज तूनिया छपरा थामिया, नी

संसार, नरक स्वर्ग, फिर अवतार, गृहस्थ में चिंत उदास अंकार, कर्म करत जी को जंजार, प्रभु कृपा ते मनव से आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संघर कीर्तन गाइए, ये वो स्थान गुरु ते पाईए, रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, घर में सुख बार फन सूखा, हर सिमरत सगल बिना से दुखा, सगल सुख जा तू चित आवे, सो नाम जपे जो जन तु पावे, रखाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा, हर हर जपत कहे दुख डेरा, हुक्म बूझे सोई परवा।

काऊ न आवत काम, संत प्रसाद ताको जप ये नाम, साध संग मन सोवत जागे, तप्रव नानक मीठे लागे, आसा महला पंजवा, एको एकी न निहारो, सदा सदा हर नाम सुमारो, राम रामा रामा गुण गावो, संत प्रसाद साध के संगे, हर हर नाम त्यावो रे हरहाओ, सगल समगरी जाके सूद परोई, कड़कड़ अंतर रव्या सोई, ओबद परलोखिन में करता, आप लेप निर्गुण रहता, करण करामन अंतर जामी, आनंद करे नानक का स्वामी, आसा महला पंजवा, कोड़ जन्म के रे पवारे,

गुरपूरे के चरण गए, कोड़ जन्म के पाप लहे, रतन जन्म यो सबल पया, कहो नानक प्रभु करी माया, आसा महला पंजवा। सतगुर अपना साध सदा सुमारे, गुर के चरण के संग चारे, जाग रे मन जागन हारे, बिन अवर न आवस कामा, झूठा मोह मिथ्या पसारे, रहाओ गुर की बाणी सो रंग लाए, गुर किरपाल होए दुख जाए, गुर बिन दूजा ना गीताओ, गुर दाता गुर देवे नाओ, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप, आठ पैर नानक गुर जाप, आसा महला पंजवा। आपे पेड़ विस्तारी साख, अपने खेती आपे राख, जद कद पेखो एक ओगी, कड़कड़ अंतर आपे सोई, रहाओ आपे सूर किरण विस्तार, तोई गुप्त सोई आकार, सरगुण निर्गुण थापे नाओ, दो मिल एक की नो ठाओ, कहो नानक गुर ब्रह्म पौ खोया, अंध रूप सब नयन अलोया, आसा महला पंजवा। उगत सियानप किशु न जाना, दिन रहन तेरा नाम खाना, मैं निर्गुण गुण नाही कोय, तरन करावन हार प्रसोय, रहाओ मूर्ख मुग्ध अज्ञान विचारी, नाम तेरे की आस मन तारी, जब तब संजम तर्म न साधा, नाम प्रभु का मने अराधा, किशु न जाना मत मेरी तोरी, विनवत नानक ओढ़ प्रातोरी, आसा महला पंजवा। हर हर अखर दोए ए माला, जबत जबत पै दीन दयाला, करो बेनती सदगुरे अपनी, कर कृपा रखो शरणाई, मोको देव हरे हर जपनी, रहाओ हर माला और अंतर तारे, जन्म मरण का दुख निवारे, हृदय संभाले मुख हर हर बोले, सो जान ए तुत कते न डोले, कहो नानक जोरा चै नाय, हर माला ताके संग जाय, आसा महला पंजवा। जिसका सब कित का होए, हे जन लेपना व्यापे कोए, हर का सेवक सदगी मुक्ता, जो कुछ करे सोई फल जान के, हाथ निर्मल दास की जुगता, रहाओ सगल त्यागर सरणी आया, हे जन काम व्यापे माया, नाम निधान जाके मन माहे, जिसको चिंता सुपने नाहे, कहो नानक गुरपूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया, आसा महला पंजवा। जो सो प्रसन्न होयो प्रा मेरा, ता दुख परम कौ कैसे नेरा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मोए निर्गुण को लिहो उधारी, रहाओ मिट गया दुख सारी चिंता, फल पाया जब सदगुरमंता, सोई सत सत गए सोए, सेमर सेमर रख कंठ परोए, कहो नानक कौन ओ कर्मा, जाके मन मसिया घर नामा, आसा महला पंजवा। काम क्रोध अंकार विभूते, हर सिमन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते, रहाओ मोह परमो जोन पवाया, अस्तिर भगत हर चरण ते आया, बंधन अंध कूब गृह मेरा, मुक्ते संत बुझे हर

नरक सुर्ग फिर अवतारा। कहो नानक जो लाया नाम सबल जन्मता का प्रवान। आसा मोहल्ला पंजवा सोए रही प्रभ खबर न जानी। और पया बौर पछतानी प्रे प्रेम सहज मन अंध तरोरी। प्रभ मिलबे की लालसा ताते आलस कहां करोरी। रहाओ कर्म अमृत आन निसारे खिसर गयो तूम पर डारे। साध मुहे लादी अंकारे दोष नहीं प्रभ करने हारे। साध संग मिटे परम अंधारे।

सिमरत नाम सगल रोग खया हराओ अनक दुख देवे अवरा कहो पहुँच न सके जन तेरे कहो दर्श तेरे की प्यास मन लागी सहज आनंद बसे बैरागी नानक की अरदास सुनी जे केवल नाम हृदय मैं दीजे आसा महला पंजवा मन तृप्तानो मिटे जंजाल प्रभ अपना होया कृपाल संत प्रसाद परी बनी जाके गृह सब किस गए पूर्ण तो भेटिया

ऐसी स्त्री एक राम उपाई, उन सब जग खाया, हम गुर राखे मेरे पाई। रहाओ पाठ गौरी सब जग जोया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोया, गुरमुख नाम लगे से सोया, वर्त नेम कर था के पुनः चरना, तट तीर्थ पवे सब तरना, से उबरे ये सदगुर की सरना, माया मोहे सबो जग बाधा, हमें पचे मनमुख मुँह राखा, गुर नानक बाँ पकर हम राखा, आसा महला पंजवा, सर्व दुख जब विसरे स्वामी, ईगा उहा कामना प्राणी, संतृप्ता से हर घर त्याय, कर कृपा अपने नाय लाए, सर्व सुख पर तुमरी रिजाए, रहाओ संग होवत को जांत दूर, सो जन्म मरता नित नित चूर, जिन किसी दिया ए चित नाहे, मां बिखिया में दिन रहन जाहे, कहो नानक प्रसिमरो एक, गद पाइगे गुर पूरे टेक, आसा महला पंजवा, नाम जपत मन तन सब हरिया, काल मर दोख सगल पर हरिया, सोई दिवस पला मेरे पाई, हर गुण गाए परम गद पाई, रहाओ सात जना के पूजे पैर, मिटे उपद्रे मन ते बैर, गुर पूरे मेल चगर चुकाया, पांच दूत सब वसगत आया, जिस मन

बंधन काट सेवक कर राखे, अमृत बानी रसना चाखे, वडे भाग पूज गुर चरना, सगल त्याग पाई प्रसरना, गुर नानक जाको पया दयाला, सो जन होआ सदा निहाला, आसा महला पंजवां, सतगुर साचे दिया पेज, चिर जीवन उपजिया संजोग, उदरे माए आए किया निवास, माता कै मन बहुत विगास, जम्या पूत भगत गोविंद का, प्रगटिया सामे लिखिया तुरका रहाओ। दसी मासी उगम बालक जन्म लिया, मिटिया सोग महा आनंद चिया, गुरबाणी सखी आनंद गावे, साचे साहिब कै मन पावे, वधी वेर बहु पीढ़ी चाली, धर्म कलागर बंद बहाली, मन चिंदिया सदगुरु दिवाया, पय अचिंत एक लिवलाया, ज्यो बालक पिता ऊपर करे बहुमान, बुलाया बोले गुर के पान, गुजी शन्नी नाही बात, गुरु नानक तुठा की नींदात, आसा महला पंजवा, गुर पूरे राख्या दे हाथ, प्रगट पया जन का प्रताप, गुर गुर जपी गुरु गुर त्याई, जी की अरदास गुरु पे पाई, रहाओ शरण परे साचे गुरदेव, पूर्ण होई सेवक सेव।

तनी तेरा परवासा बिन साचे अनटेक है। सो जानो काचा रहाओ तेरा हुकुम अपार है। कोई अंत न पाए जिस गुरपूरा पेड़ सी सो चले रह जाए। चितराई से अणपा किते काम न आई है। तुठा साहेब जो देव है सो ही सो पाई है। जे लह कर्म कमाई है पवे ना बंधा। जन नानक कीता नाम तार होर छोड़िया तंदा। आसा महला पंजवा सर सुखा में पालिया। हर जेवड़ ना कोई गुर तुठे ते पाई है। सच साहेब सोई बलिहारी गुरे अपने साध सर कुरबाना। नाम ना विसरो देखन चसा यो कीजे दाना। रहाओ भागठ सच्चा सोए है जिहर तन अंतर। सो छूटे महा जालते जिल गुर शब्द निरंतर। गुर की महिमा क्या कह गुर विवेक सत सा।

मन चढ़ लंगी है, आड़ पैर गुण गाए साधु संगी है रहाओ। भोगे भोग अनेक विण नावे सुनिया, हर की भगत बिना मर मर रुनिया। तप्पड़ पो सुगंध तन मर्दन मालना, बिन सिमरन तन शार सर पर चालना। मां विघम संसार विरले पेखिया, छूटन हर की शरण लेख नानक लेखिया। आसा महला पंजवा, कोई ना किसी संग काहे गर्बी है, एक नाम आधार पौजल तरबी है।

तद गीते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जावला हुक्मना बूझता तभी लो दुखिया गुरम हुक्म पछाणिया तभी ते सुगिया ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमे बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ गृह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने साध सद बल जाओ गुरु विटो हो वारे जिस मिल सच सुवाओ रहाओ सागन अपसागन किसको लगे जे चीत न आवे।

मार्ग पंथ सुम्हारी ना दृढ़ गुर मन में दिया मोरी तसा बुझारी दिन पी गावो रैनी गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत में विसास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक कहो त्यो दान घो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवणी कथा

मनोरथ सुहाओ तन तन तेरा तू प्रा मेरा हमरे बस किश नाग ज्यों ज्यों रख त्यों त्यों रहना तेरा दिया खागे जन्म जन्म के किल विख कट मजन हर जन तूर पाए भगत परम पौ नस हर नानक सदा हजूर आसा मोहला पंजवा आगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग आप किरपाल किरपा प्रतारी सदगुर बख्शिया हर नाम काल युग उधारिया गुरदेव माल मूत मूड़ जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव रखाओ तू आप करता साफ सरिट तरता समय रहा सुमाए धर्म राजा बिस्माद होआ सब पई पैरी आए साजुग त्रेता द्वापर पणिये काल युग ऊतमो जुगा माहे अहे कर करे सो अहे कर पाए कोई ना पकड़िए किसे थाए हर जियो सोई करे

मो कुटुंब बिखे रसमाते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ शोभन आनंद उलास माने मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संग तेल मर्म ना लहे कर कृपा रखे सत्संग नानक शरण आहे आसा महला पंजवां ए पदे ओहा प्रेम प्री हरहाओ कनक मानक गज मोतीन लालन नह नहा नहीं राजन भागन हुक्म न साधन किश किश न चाही चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री आसा महला पंजवां गुरे दिखायो लोए न रहाओ ईते ऊते काट काट काट काट तू ही मोहना कारण करना तारन करना एक एक सोयना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवां हर हर नाम अमोला ओ सहज सुहेला हराओ संग सहाई छोड़ न जाई ओ अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक ओ हर का चोला आसा महला पंजवां अपनी भगत निभागे ठाकुर आयो आहे हरहाओ नाम पदार्थ हुए सकारथ हृदय चरण बसाहे ये मुक्ता ये जूता रखो संत संगाहे नाम त्यावो सह समावो नानक हर गुण गावे आसा महला पंजवां ठाकुर चरण सुहावे हर संतन पावे हरहाओ आप गवाया सेव कमाया गुण रस रस गावे एक है आसा दर्श प्यासा आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवां एक सिमर मन माही रहाओ नाम त्यावो हृदय बसाओ जिबन को नाही प्रसरणी आये सर्व फल पाईये सगले दुख जाही जीन को दाता पुरख विधाता नानक कट कट आही आसा महला पंजवां हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम ते आवे सर्व फल पावे सो जन सुखिया हुआ राज कहावे हों कर्म कमावे बाध्यो नलनी प्रंसुआ कहो नानक जिस सदगुर पेटिया सो जन ने चलतीया आसा महला पंजवां कर चौदवां एक ओंकार सदगुर प्रसाद ओह निहो नवेला अपने प्रीतम स्यों लाग रहे रहाओ जो प्रापावे जन्म न आवे हर प्रेम भगत हर प्रीत प्रचय प्रसंग मिलीजे यो मन दीजे नानक नाम मिले अपनी दया करो आसा महला पंजवां मिल राम प्यारे तुम मिल तीरज को ना करे रहाओ सिमरत शास्त्र बहुकर्म कमाए पर तुमरे दर्श बिन सुख नाही वर्त नेम संजम कर थाके नानक साध शरण प्रभु संग बस आसा महला पंजवां कार पंद्रवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद विकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे पकर केस जम उठा रहे तही कर जावे लोभ विखिया विखे लागे हर विदचित दुखाही खिर पंगना के मान माते असुर जाने नागी रहाओ वेद सतर जन पुकारे सुने नाही डोरा निपतबाजी हार मुका पछतायो मन फोरा टान सगल गैर वजे परया दीवान लेखे ना परे जे कार्ज रहे उल सोए काम ना करे ऐसो जग हुए गुरे दिखायो तो एक कीर्त गाया मान तान असयान सर नानक आया आसा महला पंजवां बापार गोविंद नाय साध संत मनाए प्रे पाए गुण गाए पंच नाद तूर बजाए रखाओ कृपा पाए सह जाए दर्शाए अबरत्या गोविंद स्यों संत सेव प्रीत
नाथ रंग लालन लाए, गुर ज्ञान मंदिरड़ाए, रहसाए नहीं आए, सहज आए मन धान पाए, सब तजी मने की काम करा, चेर चेर चेर चेर पया, मन बहुत प्यास लागी, हर दर्शनो दिखावो मुझे तुम बतावो, नानक दीन शरण आए, गल लाए आसा मोहल्ला पंजवां, को बिकम गा।

अनप्राणः रवयो सर्वथानः लयो जपयानः पायो पेड़ थानः तो चुकी सगल कान लैनो जिस मथानः पय पावक पार प्राणः निरकर तिसे थानः हार रस रसे मानः लाती तिस पुगानः नानक सह सुमायो रे मना आसावरी महला पंजवा हर हर हर गुनीगा जपिगे सज तुनीगा साधु रसन पनीगा छूटन दिल सुनीगा।

मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरमुख राम नाम तृप्तस खोजत पाओ सहज हरे हरहाओ काम क्रोध मन मोह शरीर लब लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नाम साच पछाणे अंतर की गत गुरमुख जाने साज शब्द बिन मैल ना पछाणे निरंकार में आकार समावे अकल कला सच साज टिकावे सोनर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम स्या सुखदाता अनदन बाणी नामे राता मेरा प्रलाए ता को लागे होमे मारे सब दे जागे ऐथे उथ सदा सुख आगे मन चंचल बिद ना ही जाने मनमुख मैल शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम खाणे हर जू आगे करी अरदास साधु जन संगत हुए निवास किल दुख काटे हर नाम प्रगास कर विचार आचार पराता सदगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम मन राता आसा महला पहला मन मैगल सागत देवाना बन खंड माया मोहे हैराना एक तुत जाहे काल के चापे गुरमुख खोज लहे कर आपे बिन गुर शब्दे मन नहीं ठौरा सिमरो राम नाम अत निर्मल अवर त्यागो होमे कौरा रहाओ यो मन मुगध कहो क्यों रहसी बिन समझे जम का दुख सहसी आपे बगसे सदगुर मिले काल कंटक मारे सज पेले यो मन कर्मा यो मन तर्मा यो मन पंच तद ते जन्मा सागत लोभी ओ मन मूड़ा गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख तेरे पमन सोजी होई यो मन जोगी भोगी तब तप गुरमुख तीने हर प्रवे आपे मन बैरागी होमे त्यागी कड़ कड़ मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखे दार कर मैलनी हर पत राखे यो मन राजा सूर संग्राम यो मन निरपो गुरमुख नाम मारे पंच अपने वस किए होमे ग्रास एक दिथाय किए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख यो मन भगती जागे अनघ सुन मान्या शब्द विचारी आत्मा चीन पय निरंकारी यो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई अहे निस हर जस गुर प्रसाद कड़ कड़ सो प्रभ आ जुगात राम रसायन यो मन माता सर्ब रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दासन दासा आसा महला पहला तन बिन से तनका को कहिए बिन गुर राम नाम कत लईए राम नाम तन संग सगाई आयरस निर्मल हर लिवलाई राम नाम इन कमन हमारा सुख दुसम कर नाम न छोड़ो आपे बगस मिलामन हारा अरहाओ कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम सारा जिस तू बगसे नाम जपाए दूत ना लाग सके गुन गाए हर गुरदाता राम गोपाला क्यों पावे त्यों राख दयाला गुरमुख राम मेरे मन पाया रोग मिटे दुख ठाक रखाया आवर न औखद तंत न मंता हर घर सिमरन केल वखंता तू आप भुलावे नाम सार तू आपे रखे कृपा तार रोग परम पेद मन दूजा गुर बिन परम जपे जप दूजा आद पुरख गुर दर्शना देखे बिन गुर सब दे जन्म के लेखे देख अचरज रहे बिस्माद कट कट सुर नर सह समाध परपुर तार रहे मन माही तुम संसर अबर को नाही जा की भगत हेत मुख नाम संत भगत की संगत राम बंधन तोरे सहज त्यान छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान ना जमदूत दूत लागे जो जन राम नाम लिव जागे भगत वचल भगता हर संग नानक मुक्त पय हर रंग आसा महला पहला
ਇੱਕ ਤੁਕੀ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਜਾਣੇ, ਦੁੱਖ ਮਿੱਟੇ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ, ਆਰਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਖੈ ਨੀ, ਤਦ ਗੁਰ ਸੇਵ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਣੈ ਨੀ, ਰਹਾਓ ਬੰਧਨ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੰਸਾਰ ਬੰਧਨ

नीत नीत कर बंधिए जे रहना होई, पिंड पवे जीव चरसी जे जाने कोई, ओही ओही क्या करो है होसी सोई, तुम रोवोगे ओसनो तुमको कौन रोई, धंधा पिट्यो पाई हो तुम कूड़ कमावो, ओ ना सुनी कथी तुम लोक सुनावो, जिते सुता नानका जागा ए सोई, जे कर बूझे अपना ता नींद ना होई, जे चलदा ले चल्या केश संपे नाले, ता तन संचो देख के बूझो बीचारे, वंज करो मसूद लहो

तनी साचा मुख नाम रखाओ। सिद्धा सेवन सिद्ध पीर मांगे रिद सिद्ध, मैं एक नाम ना विसरे साचे गुर बुद्ध। योगी पोगी कापड़ी

ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करे नित तीर्थ वासा आप न जीने तामसी काहे पए उदासा एक बिंद जिदन कर राख दे से जती कहावे बिन गुर शब्द ना छूटगी प्रमे आवे जावे एक गिरगी सेवक सदका गुरमति लागे नाम दान इस नाम गिरड़ हर भगत सो जागे गुर ते दर कर जानिए जो जाए सियाने नानक नाम ना विसरे सचे मन माने आसा महला पहला मनसा मने समायले।

गर्भ बन जाएगे। मन मुखिया सिर मार वाद खपाइए, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाइए। साहिब हृदय बसाए न पछोताव ही, गुण गां बख्सनहार शब्द कुमाव ही। नानक मंगे सच गुरमुख खालिए, मैं तुझ बिन अवर न कोए नदर निहालिए। आसा महला पहला क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं कर बन हरियावला। सच टिके कर आए शब्द उतावला, जय देखा तै सोए अवर न जानिए। गुर की कार कुमाए मैल पछाणिए, रहाओ आ मिलावे सच ता मन पावई। चले सदा रजाए अंक समावई, सच्चा साहिब मन वसे वसिया मन सोई। आपे दे वडियाईया दे तोट न होई,

जियो प्राण सच त्याई है, लाह हर गुण गाय मिले सो पाई है। हरहाओ सच्ची तेरी कार दे दयाल तू, हो जीवा तुसा लागे मैं टेक आधार तू, दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावगी, दर गए नाम हदूर गुरमुख जान सी, वेला सज परवान शब्द पछाण सी, सत संतोख कर पाओ उस हर नाम से, मनो छोड़ विकार सच्चा सच दे,

अस्तुमारे रिस प्राण आधारी ताके रूप न जागी लखने क्या कर आग विचारी तीन गुणा तेरे जोगी अंतर प्यारे तेरी आखाणी कर्म होवे ता परम पद पाइये कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आमन जानी जान तो पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरे ए आणी चारे वेद ब्रह्मे को दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताक हुगमना बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगे जुगे के राजे किए गावे कर अवतारी इन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब सच्चा देता साच वखाणी जा को सच बुझावे अपना हृदय नाम सुमाणी आसा महला तीजा सदगुर हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन वसाया शब्द चीन सदा सुख पाया सुन मन मेरे तत् ज्ञान देवन वाला शब्द जाने गुरमुख पाए गे नाम निधान रहाओ सदगुर भेटे की वडियाई जिर ममता अगन तृष्णा बुझाई सहजे माता हर गुण गाई बिन गुर पूरे कोय न जानी माया होए दूजे लोभाणी गुरमुख नाम मिले हर बाणी गुर सेवा तपा सिर तब सार हर जीव मन वस सब दुख विसारण हार दर साचे दिसे सत्यार गुर सेवा ते तिर पावन सोजी होए आप शान घर पावे सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गुर सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखे उर तारे साची शोभा साध दुआरे सेवड़ भागी जे गुर सेवा लाए आन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उधरे कुल सबाए।

सात सहित सुखे सब हाट सा व्यापारी एक थाट जेजिया डन को लय न जगात सगुर कर दीनी तुरकी शाप वखर नाम लड़खेब चिलावो लै लाह गुरम कर आवो सदगुर साहो सिख वनजारे पूंजी नाम लेखा साज सुमारे सो वस्ते इत कर

साध संग हर घर जपत निर्मल साची रीत रखाओ दर्शन की प्यास कणी चितवत अनक प्रकार तरो अनुग्रो पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार मन परदेसी आया मिलो साध के संग जिस वखर को चाहता सो पायो न मै रंग जेते माया रंग रस बिरस जाए खिन माहे भगत रते तेरे नाम स्यो सुख पुंचे सब ठाए सब जग चलतो पेकीय नेचल घर को नाओ कर्म तराई सास्यो नेचल पावे ठाओ मीत साजन सुत बंद पर को होत ना साथ एक निवाहु राम नाम दीना का प्रभनाथ चरण कमल भोयत पये लग सागर तरे होते हे पेट्यो पूरा सदगुरु साचा प्रस्यो नेहे सा तेरे की जाचना विसरना सास गिरास जो तु पावे सो फला तेरे पाने कार्ज रास सुख सागर प्रीत मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्राभ पेटे परमानंद आसा महला पंजवा बिरघड़े कर चौथा चंता की जत एक ओंकार सदगुर प्रसाद पार ब्रह्म प्रसिमरिये प्यारे दर्शन को बल जाओ जे सिमरत दुख बीसरे प्यारे सो क्यों तजना जाए क्यों तन वेती संत पे प्यारे प्रीतम दे मिलाए तुसी गार बिखिया के भी।

जीवन दर्द दिखाए, जो जी तोते बिछरे प्यारे, जन्म मरे बिख खाए, जिस तू मिले सो मिले प्यारे, तिसके लागो पाए, जो सुख दर्शन।

आए, माया के संगल बंद लया, खखे खुंद कार सा आलम, कार खरीद जिन खर्च दिया, बंधन जाके सब जग बांधया, अवरी का नहीं हुकुम पया, गगे गोए गाय जन छोड़ी, गली गोबिंद गर्व पया, ताड़ पांडे जिन आवी साजी, चाड़ नवागे तई किया, कगे काल सेक जे काले, शब्द गुरु के लाग रहे, बुरा पला जे सम कर जाने, इन बिद साहेब रमत रहे, चचे चार विरजन साजे, चारे खानी चार जुगा, जुग जुग जोगी खानी पोगी, पढ़िया पंडित आप थिया, छे छे छाया वर्ती सब अंतर, तेरा किया परम हुआ, परम उपाय भुलाई गए आपे, तेरा कर्म हुआ, तिन गुरु मिलया, जजे जान मंगत जन जाचे, लग चौरासी पीह पवया, एको लेवे एको देवे, अवर न दूजा मैं सुनया, झजे चूर मरो क्या प्राणी, जो कुछ देना सो दे रहा, दे दे वेखे हुकम चिलाए, ज्यो जिया घर जिक पया, नन्हे नदर करे जा देख, दूजा कोई नाही, एको रब रहा सब थाई, एक वसया मन माही, टट टंच करो क्या प्राणी, कड़ी के मौत के उड़ चलना, जुए जमन हारो अपना, पाज पड़ो तुम घर सरना, ठठे ठाण वर्ती तिन अंतर, हर चरणी जिनका चित लागा सही जा निस्तरे, तो प्रसादी सुख पाया, डडे डंप करो क्या प्राणी, जो किश हुआ सो

एक सब तू चीने नाही, फिर फिर जूनी आवेगा। तो सिर लिखया सो पढ़ पंडित, अवरा नू ना सिखाल बिखया। पहला फाया पाया पांदे, पिछों दे गल चाटड़िया। ससे संजम गए ओ मूड़े, एक दान तुद कुथाए लया। साई पुत्री जजमान की, सा तेरी ए तन खादे तेरा जन्म गया। ममे मत हिर लई तेरी मूड़े, होमे वड्डा रोग पया। अंतर आत्मे ब्रह्म न चीनिया, माया का मोहताज पया। कक्के काम क्रोध परमयो मूड़े, ममता लागे तुद घर विसरिया। पड़े गुणे तू बहुत पुकारे, हिण बूझे तू डूब मुआ। तत्ते तामस जलयो मूड़े, थत्थे थान त्रिष्ट होआ। ढगे कर कर फे तू मूड़े, दद्दे दान न तुद लया। पपे पार न पवगी मूड़े, परपंज तू पलच रहा। सच्चे आप खुआयो मूड़े, यो सिर तेरे लेख पया। पबे पवजल डुबयो मूड़े, माया विच गलतान पया। गुरप्रसादी एको जाने, एक कड़ी मैं पार पया। ववे वारी आईया मूड़े, वा दियो तु विसरिया। ए वेला ना लैसे मूड़े, फिर तू जम के वस पया। झजे कदे ना चूरे मूड़े, सतगुर का उपदेश सुन तू विखा। सतगुर बाजो गुर नहीं कोई, निगुरे का है नाओ बुरा। तदे तावत वर्ज रख मूड़े, अंतर तेरे निधान पया। गुरमुख होवे ता हरस पीवे, जुगा जुगंतर खाए पया। गगे गोविंद चित कर मूड़े, गल्ली किने न पाया। गुर के चन हिरदे साए मूड़े, पिछले गुणे सब बगसलया। हाय हर कथा बुझ तू मूड़े, ता सदा सुख होई। मनमुख पड़े तेता दुख लागे, फिर सगुर मुक्त न होई। हरारे राम चित कर मूड़े, हिरदे जिन कै रब रहया। गुर प्रसादी जिनी राम पछाता, निर्गुण राम तिनी बूझ लया। तेरा अंत न जाई लखया, अकथ न जाई हर कथया। नानक जिन को सदगुर मिलया, तिनका लेखा निबड़या। राग अस महला पहला, शंत कर पहला एक ओंकार। सदगुर प्रसाद मुद जोबन बालड़िए, मेरा पिर रलिया ला राम। तन पिर नेओ कणा रस प्रीत दया ला राम। तन पिरे मिला हुए स्वामी, आप कृपा करे। सेजा सुहावी संग तिरके, सात सर अमृत परे। कर दया मया दयाल साचे, शब्द मिल गुण गावो। नानका हर वर देख बिगसी, मुंद मन उमाहो। मुंद सहज सलोनड़िए, एक प्रेम बेनंती राम। मैं मंतन घर पावे, प्रसंग मराती राम। ता प्रेम राती हर बेनंती, नाम हर के सुख वसे। तो गुण पिछाणे ता प्रभ जाने, गुणे वस अवगुण नसे। तुझ बाज एक तिल रह ना सक, कहन सुन ना तीजे। नानका प्रयो प्रयो कर पुकारे, रसन रसमन पीजे। सखी हो सहेलड़ी हो, मेरा फिर वणजारा राम। हर नामो वणजड़या, रस मूल अपारा राम। मोल अमोलो सज कर टोलो, प्रभावे ता मुंद पली। एक संग हर के करे रलिया, हो पुकारी दरखली। कारण कारण समरसरी तर, आप कार्य सारे। नानक नदरी तन सुहागन, शब्द अब साधार। हम कर साचा सोयलड़ा, प्रभ आयड़े मीता राम। रावे रंग रातड़िया, मन लीड़ा दीता राम। अपना मरदिया हर वर लिया, क्यों पावे त्यों रावे। तन मन पिरे आगे शब्द सुभागे, कर अमृत फल पावे। बुद्ध पाठ ना पाईए, बहु चतराईए। पाए मिले मन पाने, नानक ठाकुर उम्मीद हमारे। हम नहीं लोकाने।

जाए स्वामी तिन फल तोट न आवे, तिन जरा न मरना नरक न परना, जो हर नाम ते आवे हर हर करे से सूके नाही, नानक पीड़ ना खाए जियो, नाम लयन से सोह है तिन सुख पल होवे, मन है से जिन जाए जियो, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला पहला शांत कर तीजा, तू सुन हरना कालिया की वाड़गे रता राम, बिखबल मीठा चार दिन फिर होवे ताता राम, फिर होए ताता खरा माता ना बिन परतापे, ओ जेव सायर दे लहरी बिजली जिवे चमके, हर बाज रखा कोए नाही सोए तुझे बिसारिया, सद कहे नानक चेतरे मन मरे हर ना कालिया, पावरा फूल पवंतिया दुख अदपारी राम, मैं गुर पूछा अपना साचा बिचारी राम, विचार सगुर मुझे पूछया पवल बेली रातो, सूरज चढ़या पिंड पड़या तेल तामन तातो, जाओ मग बादा खाए चोटा शब्द बिन बेता लिया, सद कहे नानक चेतरे मन मरे पवरा कालिया, मेरे जीड़िया परदेसिया इत पवे जंजा ले राम, साचा साय मन मसे की फासे जम जा ले राम, मछली विछुन्नी नैन रुन्नी जाल बदक पाया, संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया, भगत कार चित लाए हरस्यो छोड़ मनो अंदेसिया, सद कहे नानक चेतरे मन जीड़िया परदेसिया, नदियां माव शून्या मेला संजोगी राम, जुग जुग मीठा विस परे को जाने जोगी राम, कोई सहज जाने हर पछाणे सदगुरु जिन चेतया, बिन नाम हर के परम पूले पचे मुद अचेतया, हर नाम भगत ना हृदय साचा से अंत ताही रुनिया, सद कहे नानक शब्द साचे मेल चिरी विछुनिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला तीजा शंत कर पहला, हम करे साचा सोहला साचे शब्द सुहाया राम, तान पिर मेल पया प्रभ आप मिलाया राम, प्रभ आप मिलाया सच मन वसाया, कामन सहजे माती गुर शब्द सी।

शांत कर तीजा साजन मेरे प्रीतमों तुम सह की भगत करे हो गुर सेवो सदा अपना नाम पदार्थ ले हो भगत करो

जिन्ना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे, हर करता सब कुछ जानदा सिर रोग हथ दीजे। जिना नानक गुरम खिरदा सुध है हर भगत हर लीजे। आसा महला चौथा, जिन अंतर हर घर प्रीत है तेजन सुगड़ सियाने राम राजे। जे बारों पुल चुक बोल दे पी खरे हर पाने, हर संता नू होर थाओ नाही हर मान निमाने। जन नानक नाम दीवान है हर तान सताने।

प्रयो सह सुभाई छोड़ न जाई, मन लागा रंग मजीठा। हर नानक बेदे चरण कमल किश आन न मीठा, ज्यों राती जल माशली त्यों राम रसमाते राम राजे। गुरपूरे उपदेसया जीवन गद पाते राम राजे, जीवन गद स्वामी अंतर जामी आप लिगे लड़ लाए। रतन पदार्थो प्रगटो पूर्णो चोर न कत हो जाए, प्राभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताग की मिटे ना दाते। जल संग राती माशली नान कर माते, चातक जाचे बूंद ज्यों, हर प्राण आधार आराम राजे। मार

रचायो नंग आमन जामणिया। फिर साधु सरणी पड़िगे चरणी अब टूटस मोजो कीती है। कहो नानक शांत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत तब दिनियर देखिए। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डेवे। मन ऐसी प्रीत कीजे जैसी तरण पतार उर्जी तेरे सिवे। इहो मन लाल दीजे मन लाले दीजे भोग करीजे। हाँ खुशियां रंग माने फिर अपना पाया रंग लाल बनाया। अत मिलो मित्र चिराने गुरथिया साखी तां डिठम आखी। फिर जे अवर ना दिसे को नानक शांत दयाल मोहन के मन हर चरण गहीजे। ऐसी मन प्रीत कीजे आसा महला पंजवा सलोक। बन में फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे। नानक पेटे साध जाप हर पाया मन माहे। शंत जाको खोजे असंख मुनि अनेक तपे। ब्रह्मे कोड़ आराध्य ज्ञानी जाप जपे। जब ताल संजम क्रिया पूजा अनक शोधन बंदना। कर गमन बसदा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बनते न पशु पंखी सगल तुझे आराधते। दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट बिशन अवतार शंकर जटा धार। क्या है तुझे दयार मन न रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूर्क प्रथनी। सुर सिद्ध गण गंधर्व त्यावे यख किन्नर गुण पणी। कोड़ इंदर अनेक देव जप्त स्वामी जय जयकार। अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोड़ देवी जा को सेवे लक्ष्मी अनक पात। गोवत प्रगट जा को आराध्य पौन पानी दिनस रात। नखेत्र ससियर सूर त्यावे बद गगना गावे। सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे। सिमरत पुराण चतर बेत हर शास्त्र जा को जपात। पद पावन भगत वचल नानक मिलिगे संग सात। जेती प्रभु जनाई रसना तेत पनी। अन जानत जो सेवे तेती न जाए गनी। अवगत अगंत अथा ठाकुर सगल मंजे बहारा। सर्व जाज एक दाता न दूर संगी जारा। बस भगत थिया मिले जिया ताकि उपमा कित गनी। यो दान मान नानक पाए शीस साधे तर चरणी। आसा महला पंजवा सलोक। उदम करो वडभागी हो सिमरो हर हर राय। नानक जे सिमरत सब सुख होवे। दुख दर्द प्रम जाए शंत। नाम जपत गोविंद न अलसाइए। भेड़ साधु संग जमपुर न जाइए। दुख दर्द ना पौ व्यापे नाम सिमरत ससुखी। सास सास आराध हर हर त्याए सो प्राव मान मुखी। किरपाल दयाल रसाल गुण निध कर दया से वालाइए। नाक पयंपे चरण जंपे नाम जपत गोविंद न अलसाइए। पामन पत पुनीत नाम निरंजना। परम अंधेर विनाश ज्ञान गुर अंजना। गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल थल मही यल पूरिया। एक निमख जा के हृदय बसया मिटे तसे वसूरिया। अगाध बोध समरस स्वामी सर्व का पाओ पंजना। नानक पयंपे चरण जंपे पावन पत पुनीत नाम निरंजना। ओढ़ गई गोपाल दयाल कृपा निदे। मुए असर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे। हर चरण कारण कर्ण स्वामी पतत उदन हर हरे। सागर संसार पावे उतार नाम सिमरत बहुतरे। आद अंत व्यंत खोजे सुनी उदरन संसंग विदे।
नाग पयम पै चरण जम पै ओढ़ गई गोपाल दयाल कृपा निध भगत वचल हर बिरद आप बनाया। जय जय संत आराध्य तह तह प्रगटाया। प्रभु आप लिए समाए सह सुपाए भक्त कार्य सारिया आनंद हर्ज समा मंगल सर्व दुख विसारिया। चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नाक पयम पै चरण जम पै भगत वशल हर बिरद आप बनाया। आसा महला पंजवा फिर संतन सुहाग मरे ना जावे जा के ग्रे हर ना हो सो सदगी रावे अवनासी अवगत सो प्रभ सदा नव तन निर्मला न दूर सदा हदूर ठाकुर दैज पूर्ण ससद प्राण पत गत मत जाते प्रे प्रीत प्रीतम पावे नानक वखाणे गुरबचन जाने फिर संतन सुहाग मरे ना जावे जाको राम पतार ताके अंध कणा सुगवंती सानार सोभा पूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निद तिद तिरे नहीं ऊना सब कशु मदरबानी तिरे मानी फिर सुहागता का बना नानक वखाने गुरबजन जाने जाको राम पतार ताके अंधकणा आओ सकी संत पास सेवा लागी है पीसो चरण पखार आप त्यागी है तया मिटे संताप आप ने जानाई है शरण गही जे मान लीजे करे सो सुख पाई है कर दास दासी तज उदासी कर जोड़ दिन रहन जागी है नानक वखाने गुरबचन जाने आओ सकी संत पास सेवा लागी है जाके मस्तक भाग से सेवा लाया ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया साध संग हर के रंग गोविंद सिमरन लग गया परम मोहकार दूजा सगल तिने त्याग गया मन शांत सहज सुभाव उठ अंध मंगल गुण गाया नानक वखाने गुरबजन जाने जाके मस्तक पाक से सेवा लाया। आसा महला पंजवा श्लोक हर हर नाम जपंतिया कछ ना कहे जमकाल नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल चंत मिलो संतन के संग

बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज सुमानी सुख सोए लड़े हर गामन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सरसे हर नाम रहसे प्रभ आप कृपा तारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवसे आए सहज पाए सगल निध प्रा पागे बिनवंत नानक सर।

तीर्थ नहावे अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन ध्यावन जित अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजय।

पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे मिले सच ता तिनी सच कमाया सदगुर मिले सच पाया जिनके हिरदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लभदी है पढ़ पढ़ परिये साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डिये खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेख एक गल होर होमे चखना चाख महला पहला लिख लिख पढ़िया।

अंधी रित ज्ञान विहूणी भाए परे मुरदार। ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सीगार, उच्चे कूके वादा गावे जोधा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुजत

आवे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना होम किए मन पाम दे राहे भीड़े अगे जावना नंगा दोजक चालिया ता दिसे खरा डरावना कर औगण पछोतावना सलोक महला पहला दया कपास संतोग सूत जद गंडी सतवट यो जिनेऊ जी का है ता पांडे कत ना यो तुटे ना मल लगे ना यो जले न जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकड़ मुल अनाया बै चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थे ओ मुआ ओ चढ़ पया वे तग्गा गया महला पहला लग चोरियां लख जारियां ला कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहे ना मिया रात दिन सजी नाल तग कपाह हो कतिये बामन वटे आए कोई बकरा रिन खाया सब को आखे पाए होए पुराना सुटिए पी फिर पाइए होर नानक तग ना टुटई जे तग होवे जोर महला पहला नाए मने पद उपजे साला ही सच सूत दरगे अंदर पाइए तग ना तूड़ सपूत महला पहला तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना अखी वे तगा या पेवत वड़ तागे अवरा कत ले पाड़ करे भी आहो कड़ कागल दसे राहो सुन वेखो लोका एहो विडान मन अंदा नाओ सुजान पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसन हुक्म मनाए सी हुक्म मने होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगह पैदा जाए सी श्लोक महला पहला गऊ ब्राह्मण कौ कर लाभ हो गोबर तरण ना जाई धोती टिक्का तय जप माली तान मले छाखाई अंतर पूजा पड़े कतेबा।

हाथ शुरी जगत का साई, नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण, मलेश तान ले पूजे प्राण, अपाख्या का कुठा बकरा खाना, क्योंकि ऊपर कसे न जाना, देख चौका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कूड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, यो अन्न असाडा फिटे, तान फिटे फेड़ करेन, मन जूठे चुली परेन, कहो नानक सच त्याई है, सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी, चित्ते अंदर सबको वेख नदरी हेड़ चलाएंदा, आपे दे वड्याईया आपे ही कर्म कराएंदा, वड्डो वड्डा वड़ मेदनी सिर सिर तंदे लाएंदा, नदर उपठी जे करे सुल्ताना कहो कराएंदा, दर मंगन पिख ना पाएंदा। श्लोक महला पहला, जे मुहा का कर्म होए पितरी दे, अगे वत सन्याणी है पितरी चोर करे, वड्डे हाथ दलाल के मुस्पी एक करे, नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले दे, महला पहला जो जोरू सिर नावणी आवे वारो वार, जूठे जूठा मुख बस नित नित होए खुवार, सूचे ए ना आखी है बैन जे पिंडा तोए, सूचे से ही नानका जिन मन वसे आसोए, पौड़ी तुरे पराने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया, कोठे मंडप माड़िया

करना कियो, कल आपे ही ते तारिये, देखे कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनो वसारी है, आपन हथी अपना आपे ही कासवारी है। श्लोक महला दूजा, एक ने ही आस की दूजे लगे जाए, नानक आस कंडी है,

जियो गुर चरण लाघम बिनवता पूछत कहे जियो पाया कामन काज जब उपजे बिनसे कहो मोहे समझाया देव करो दया मोहे मार्ग लाभो।

तपी सन्यासी बो तीर्थ प्रमना लुंजत मुंजत मोन जटा कर अंत तऊ मरना ताते सेवियले राम ना रसना राम नाम हित जाके कहां करे जमना अरहाओ आगम निर्गम ज्योतक जाने बहु बव्या करना तंत मंत्र सब औखद जाने अंत तऊ मरना राज भोग अरशद सिंघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुभाषक चंदन अंत तऊ मरना वेद पुराण सिमर सब खोजे

पढ़त गुणत ऐसे सब मारे, किन्हू खबर न जानी रहाओ। सगत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदोगा पाई। जौरे खुदाई मुझे तुर्क करेगा, अपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा।

हंस अकेला जाई, कहेत कबीर सुनो रे संत, पै सागर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है,

फिर पछताना बिरध पायो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भोजंग बलयो अरहाओ चूके सर्वर पाल बंधावे लूणे खेत हथवार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुग्ध फिरे चरण शीस कर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे जेवा बचन शुद्ध नहीं निगसे ताबरे तर्म की आस करे

पिस्त छोड़ कर दोजक स्यो मन माना आसा गगन नगर एक मूद न बरख नाद कहा जो सुमाना पार ब्रह्म परमेश्वर माधो परम हंस ले सिधा।

राम रमत तिस सबके सूझे, बाईस चौपद तथा पंच पदे, आसा श्री कबीर जीओ के तिपदे अठ, दो तुके सत।

आस बड़ पाग हमारा तुर नार मुनजन कौतक आए कोड़ ते तीस उजाना कह कबीर मोए ब्याए चले हैं पुरख एक भगवाना।

करे लड़ाई माया सद मतवारी, बड़े पाई के जब संग होती तब हो ना प्यारी। कहत कबीर पंच को चगर जगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बाध्या, मैं राम रमत सुख पाया।

छोड़ परम निधान बाबा माया मोहित कीन, जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाओ। नैन देख पतंग उर्ज पसना देख आग, काल पास ना मुग्ध चेत कनक का मन लाग, कर विचार विकार परहर

अंतर मैल जे तीर्थ नावे तिस बैकुंठ न जाना, लोक पतीने कछु न होवे, नाही राम एयाना, पूजो राम एक ही देवा, साचा नामन गुर की सेवा, रहाओ। जल के मज्जन जे गत होवे,

हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ, हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर, निमत नाम दियो दूध पी आया, तौ जग जन्म संकट नहीं आया, जन रविदास राम रंग राता, क्यों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता, माटी को पुत्र कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरे फिरत है रहाओ, जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोमन लगत है, मान बद क्रम रस कसे लोभाना, बिरस गया जाए कहूं समाना, कहे रविदास बाजी जग पाई, बाजी गर सौ मोहे प्रीत बन आई, आसा बाणी भगत धन्ने जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रमत फिरत बो जन्म बेलाने, तन मन तन नहीं तीरे, लालच बिख काम लुभ दराता, मन बिसरे प्रभ हीरे, अरहाओ बिख बल मीड लगे मन बौरे, चार विचार ना जानिया, गुणते प्रीत बड़ी अनपांती, जन्म मरण फिर तानिया, जुगत जान नहीं रिदे निवासी, जलत जाल जम फंद परे, बिग पर संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे, ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ध्यान मान मन एक मये, प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्त अगाने मुक्त पये, जोत समाए समानी जाके असली प्र पहचानिया, तन तन पाया तरणी तार, मिल जन संत समानिया, महला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद संघ,

रीत है हर मेरी हर मेरी कथा कहानी जी, गुर प्रसाद मेरा मन पीजे एहा सेव बनी जियो अरहाओ। हर मेरा सिमरत हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप हर मेरा पाई, हर की मैं भूख लागे हर नाम मेरा मन तृप्त, हर मेरा साक अंत होए सगाई, हर बिन होर रास कूड़।

सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सब बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया गुजरी महा।

सगल सिट को तणी कही जय, जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुद्ध पाई, हर कीर्तन आधारो। नाम दियो त्रिलोचन कबीर दासरो, मुक्त पयो चम्यारो। गुजरी महला पंजवा, है नाही को बूजन हारो। जाने कमन पता, शिव बरंज अर सगल मोन जान। गहे ना सकाहे गता, प्रभ की आगम अगाध कथा। सुनिए अवर अवर विद बुझिए।

साध संग नानक दर्श पायो बिनसो सगल नेहोरा गुजरी मोहल्ला पंजवा आल जाल प्रमोत जावे प्रसे तीरंग लाई मन को ए उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जे भेटे टूटे माया बंद बिसर ना कब हूं जाई हराओ करत करत अनकबो पाती

सास सासना बिसर कब हूँ ब्रह्म प्रभ सुमरथ गुण अनकरसना क्या बखाने अगंत सदा अकथ दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरण दृढ़ नानक हर हर सरण गुजरी मोहल्ला पंजवा अहं बुद्ध बहु सघन माया महा दीर्घ रोग हर नाम औखद गुरना।

भगत गोपाल सिमरन मिट जोनी पवन मित्र पुत्र कलत्र सुरहृद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख निवारे मिले हर जन संत सर्व विद भ्रमते पुकार है अते

आराद श्री तर सबल मूर्त करण कारण जोग गुण रमण श्रमण अपार महिमा फिर न होत बियोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण

पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा ना हो रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वडे भाग लिव लागी। कबल प्रगास पए सासंगे दुरमत बुद्ध त्यागी। आठ पैर हर के गुण गावे सिमरे दीन दयाला। आप तरह संगत सब उधरे बिन से सगल जंजाला। चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ। शरण पर्यो नानुता तुमरी दे राख्यो हर हाथ। गुजरी अष्टपदियां महला पहला तार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक नगरी पंच चोर बसियल बबरजत चोरी तावे। त्रेद समार रखे।

करे भिखिया कहो केते उधर भरन कहताई, बिन घर भगत नाही सुख प्राणी, बिन गुर गर्भ ना जाई। ऐ जी काल सदा सिरी ऊपर ठंड, जन्म जन्म वैराई, साचे शब्द रते से बाचे, सदगुर बूझ बुझाई। गुर शरणाई जोए न सके, दूत न सके संताई, अवगत नाथ निरंजन राते, निरपोस्यों लिवलाई। ऐ जी ओ नाम दिड़ो नाम।

परे गुर शरण तुम्हारी मैं अवर ना दूजी पाई। आप तब एको एक पुकारो आद जुगा सिखाई। ऐ जी राखो पैज नाम अपने की तुझ की स्यों बने आई। कर कृपा गुर दर्श दिखावो हम में शब्द जलाई। ऐ जी क्या मांगो किस रहे ना दिसै

आहे साहे सदा संभालिए, आपे बगसे करे रजाए, से ही नच है जोत भाव है, जे गुरमुख शब्द भी त्यारी, कहो नानक से सहज सुख पावे।

काम क्रोध हरन मद मोह दैन मुरार मन मकरंद जन्म मरने वार धरणी तर पत राख परमानंद जलत अनक तरंग माय गुर ज्ञान हरिद मंत छेद अंग बुद्ध करणा मैं चिंत मेट पुरख अनंत

जगदीश जप मन तारद प्रतीत जी दया मया सर्वतरमण परमहंस रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान पर

पौड़ी अपना आप पायोन तदो होर ना कोई मता मसूरत आप करे जो करे सो होई तदो आकाश ना पाताल है ना त्रै लोई तदो आपे आप निरंकार है ना योपत होई ज्यों तज पावे तिवे करे तिस बिन अवर ना कोई। श्लोक महला तीजा साहिब मेरा सदा है दिसे शब्द कमाए ओ अवहानी कदे नाहे ना आवे ना जाए सदा सदा सो सेवी है जो सब

स्वामी तेसो गुर की सिख सुनाए, हर नाम त्यावे हर नामो गावे, हर नामो अंत छिडाए पौड़ी, जिन्ना हुक्म नाए ते पूरे संसार साहिब सेवने अपना।

अमृत नाम है गुरमुख पावे कोय वाव कर्मी पाई है आप दया कर दे नानक वाव गुरमुख पाई है अनदिन नाम लाए मोहल्ला तीजा बिन सतगुर सेवे सांत न आवई दूजी ना ही जाए जे बो तेरा लोची है विण कर्मे ना पाया जाए जिन्ना अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुआए जमन मरण ना चुकई होमे विच दुख पाए जिन्ना सतगुर सिउ चित लाया सो खाली कोई ना है तिन जम की तलब ना होवई ना होए दुख सहाग नानक गुरमुख उभरे

पौड़ी आपे जगत उपायोन कर पूरा थाट आपे सौ आपे वणजारा आपे ही हर हाट आपे सागर।

क्रोध लोभ छोड़िए दीजे अग्न जलाए जीव दया नित जापिए नानक साचा नाओ मोहल्ला पंजवा सिमरत सिमरत प्रभ अपना।

मन की कटिए मैल, साध संग उठिया जन मरण पौ कटिए, जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाए छप, इस्यो लायन रंग जेदी सब तारिया, ऊंची ऊंचा थान अगम अपारिया, रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है, जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा, बार विडानड़े हुमस तुमस कूका पईयां राही, तौ सह सेती लगड़ी डोरी नानक अंध सेती बन गाही। महला पंजवा, सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ, तिन संग संग न कीचई नानक जिन्ना अपना स्वाओ, पौड़ी सावेला परवा।

का बोलिया प्रवान है दरगह पवे थाए भगता तेरी टेक अरते सचनाए जिसनु हुए किरपाल तिसका दुख जाए भगत तेरे दयाल ओना मेर पाए दुख दर्द वड़ रोग ना पोगे तिस माए भगता इहो आधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रहन इको एक त्याए पीवत अमृत नाम जान नामे रहे अघाए श्लोक महला पंजवा कोट बिघन तिस लागते जिसनु विसरे नाओ नानक अनदिन बिरपते ज्यो सुन्ये करकाओ महला पंजवा प्री मिलावा जाथिये साई सुहा वीरुत कड़ी मोहत न विसरे नानक रविये नित पौड़ी सूर वीर वरियाम किने ना होड़िये फौज ताणी हाठ पंचा जोड़िये दस नारी अवधूत देन चमोड़िये जिन जिन लैन रलाए इहो इना लोड़िये तै गुण इनके वस किने ना मोड़िये परम कोट माया खाई कौ कित बिद तोड़िये गुरपूरा आराध बिखमदल फोड़िये हाँ इस अगे दिन रात रहा कर जोड़िये श्लोक महला पंजवा केलबग सबे उत्तरन नीत नीत गुण गाओ कोड़ केले सा उपजे नानक विसरे ना।

क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट बासना निवार राख लियो प्रभे अपने नानक सरबरे हार महला पंजवा खांदिया खांदिया मोह कठा पए नंदिया सब अंग नानक त्रिग तिना दा जीवया जिन सच ना लगो रंग पौड़ी।

रविदास कमनगत मोरी गुजरी श्री त्रिलोचन जीओ के पदे कर पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद अंतर माल निर्मल नहीं कीना बार पेख उदासी हिरदे कमल खड़ ब्राह्मण चीना कहे पया सन्यासी परमे पुली रे जय चंदा नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रगाओ धर कर खाया पिंड बधाया खिंथा मुंदा माया ऊम मसान की पसम लगाई गुरबिन तत् न पाया काए जपो रे काए तपो रे काए बलोवो पानी लख चौरासी जे न्यो पाई सो सिमरो निर्वाणी काए कमंडल कापड़िया रे अड़सड़ काए फिराही बत्र लोचन सुने प्राणी कण बिन गहो के पाही गूजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमर ऐसी चिंता में जे मरे सर्प जोन वल बल औतरे अरीबाई गोविंद नाम मत बिसरे रहाओ अंतकाल जो स्त्री सिमर ऐसी चिंता में जे मरे बेसवा जोन वल बल औतरे अंतकाल जो लड़के सिमर ऐसी चिंता में जे मरे सूकर जोन वल बल औतरे अंतकाल जो मंदिर सिमर ऐसी चिंता में जे मरे प्रेत जोन वल बल औतरे अंतकाल नारायण सिमर।

निर्गुण निबाणी अनाथ बिनवै मिलो प्रभ कृपा निधे। प्रम पीत खोइये सहज सोइये प्रभ पलक पेखत नव निधे। गृह लाल आवै महल पावै मिल संग मंगल गाइये। नानक पैम पै संत सरणी मोहे दर्श दिखाइये। संतन कै प्रसाद हर घर पाया राम। इश पुनी मन शांत तप्त बुझाया राम। सबला सो दिनस रहने सुहावी अंध।

गुण संपूर्ण प्रम पीत हर हर मिल पगै बिनवंत नानक सुन मंत्र सगिए हर नाम नित नित नित जपे हर नार सुहागणे।

या राम तुग सहज आनंद विरोध सदगी गुण गोपाल नित गाई है। पज साध संगे मिले रंगे बौड़ जोन ना ताई है। गय कंठ लाए सह सुखाए

बिख माया तन संच मर अंत होए सवशार कर्म धर्म सो संजम करे अंतर लोभ विकार नानक जे मनमुख कमावे सो थाए ना पवे दर गए होए खुवार पौड़ी आपे खाणी आपे बाणी आपे खंडवर पंड करे आ समुंद आप गए सागर आपे ही वेचे रतन तरे आप लहाए करे जिस किरपा

सदगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, नाम पदार्थ पाई है, अचिंत वसे मन आए, जन्म मरण दुख कटी है, होमे ममता जाए, उत्तम पदवी पाई है, सत्ते रहे सुमाए, नानक पूर्व जन को लिखया, तेना सदगुर मिलया आए, महला तीजा, नाम रता सदगुरु है, कल युग भोयथ होए, गुरमुख होवे सो पार पवे, जिन्ना अंदर सच्चा सोए, नाम सुमाले नाम संग्रह, नामे ही पत होए, नानक सतगुर पाया, कर्म प्राप्त होए पौड़ी, आपे पास आप तात है, आप की तोन कंचन, आपे ठाकुर सेव के आपे, आपे ही पाप खंडन, आपे सब कर भोगवे स्वामी।

उपदेसे आपे सुगड़ स्वरूप से आनी अपना चोज कर वेखे आपे आपे सबना जिया कहे जानी। श्लोक महला तीजा एहा संध्या प्रवान है जित हर प्रम मेरा चित आवे हरसो प्रीत उपजे माया मोह जलावे गुर प्रसादी दुबदा मरे मनवा अस्थिर संध्या करे विचार नानक संध्या करे मनमुखी जियो ना टिके मर जम्मे होए खुवार। महला तीजा प्रयो प्रयो करती सब जग फिरी मेरी प्यास न जाए नानक सतगुर मिले मेरी प्यास गई फिर पाया कर आए पौड़ी। आपे तंत परम तंत सब आपे आपे ठाकुर दास पया आपे दस अठ वर्ण उपायन आप ब्रह्म आप राज लया आपे मारे आपे छोड़े आपे बगसे करे दया आपे पुल न पुल्ले कभी सब सच तपापस सच थया आपे जिना बुझाए गुरमुख इन अंदरों दूजा परम गया। श्लोक महला पंजवा हर नाम न सिमरे साध संग तैतन उड्डे खेहे जिन कीती तिसे ना जानई नानक फिट अलूनी दे। महला पंजवा खड़ बस्ते चरणार बिंद रसना जपे गोपाल नानक सुप्रस

जिसनु गुरमुख आप बुझाए सो सदगी दरगे पाए मान जेदी पैज रखे घर स्वामी सो सत्या घर जान। श्लोक महला तीजा। नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाए सबदे सो चित न लावई जित सुख वसे मन आए तामस लगा सदा फिरे अहे निस जलत बिहाए जुत भावे सो थीए कहना किशु न जाए। महला तीजा। सदगुरु फुरमाया कारी एक करे हो गुरु द्वारे होए कह साहेब संभाले हो साहेब सदा हजूर है परमे के छौड़ कट के अंतर ज्योत तरे हो हर का नाम अमृत है दारू एहो लाए हो सगुर का पाणा चित रखो संजम सच्चा ने हो नानक ऐथ सुखे अंदर रखसी अगे हर्षों केल करे हो पौड़ी आपे पार अठारे बनस्पति।

राम राम करता सब जग फेरे, राम न पाया जाए। अगमे गोचर अत वड्डा, अतुल न तुल आ जाए। कीमत कने न पाई, किते न ले आ जाए। गुर कै शब्द पेदया, इन बिद वसया मन आए। नानक आप अमयोग है।

एमान योत्पन्न नाम है जित सदा सदा सुख होए टोटा मूल न आवई लाहा सदगी होए खाद है खर्चे तोट न आवई सदा सदा ओ दे सहसा मूल न होवई फाणत कदे न होए नानक गुरमुख पाई है जा को नदर करे पौड़ी आपे सब कट अंदर आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जहर जो शक्ति गोबार कर वर्त्या सुनहर उथे वेद पुराण ना सास्ता आपे हार नर हर बैठा ताड़ी लाए आप सब दूगी बाहर अपनी मित आप जान।

हिंदू मूले भूले अखुट्टी जाही, नारद कया से पूज कराही, अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुग्ध गवार, ओए जा आ डुबे तुम कहां तरनहार, पौड़ी सब क्यों तेरे वस है तू सच्चा साहो, भगतर ते रंग एक कह पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर राज्य राज जन खाहो, सब पदार्थ पाइयन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो, श्लोक महला तीजा सब किस हुक्मे आवंदा सब किस हुक्मे जाए, जे को मूर्ख आपो जाने अंधा अंध कुमाए, नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनु कृपा करे रजाए, महला तीजा सो जोगी जुगत सो पाए, जिसनु गुरमुख नाम प्राप्त होए, ते जोगी की नगरी सब को वस पेखी जोग ना होए, नानक ऐसा विरला को जोगी जिस कट प्रगट होए, पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार, आपे सूखम पालिए आपे पासार, आप एकाती होए रहे आपे वड़ परवार, नानक मंगे दान हर संतारे नार, होर दा तार ना सुजई।

निर्मल नाम से मन आए परमे भूला फिरे संसार मर जन्मे जम करे खुवार नानक से भागी जिन घर नाम कहाया गुर प्रसादी मन मसाया वढ़ांस महला तीजा होमे नावे नार विरोध है दोई नाव से एक ठाए होमे जो सेवा ना हो वही कामन बिरथा जाए हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए हुक्म मने ता हर मिले ता विचो होमे जाए रखाओ होमे सब शरीर है होमे ओपत होए होमे वड़ा गुबार है होमे विच बुझ न सके कोए होमे विच भगत न हो वही हुक्म न बुझिया जाए होमे विच जियो बंद है नाम ना वसे मन आए नानक सतगुर मिले होमे गई ता सच वसया मन आए सच कमावे सच रहे सच्चे सेव समाए वढ़ांस महला चौथा कार पहला एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सेज एक को प्रभ ठाकुर गुरमुख हर रावे सुख सागर।

नेतन सेव करी हर जन की, जो हर घर कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सदगुर पूरा, नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे, जित मिल हर नाम त्यावा। गुर सदगुर पासो हर गोष्ठ पूछा, कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के, मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित

सो हर घर सदा संभाले, सो हर घर नाम सदा सदा संभाले, जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया, नानक हर जान हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया, वड़हंस महल।

कोट कोट लख तावे एक तिल ताका मैल न पावे सुहावी कौन सो वेला जित प्रा मेला रहाओ लाख भगत जा को आराध लाख तपीसर तब ही साध

मैं सर्व सुखा सुख पाया अम्माली तेर सर्व रहा पर पूरे जन नानक हर अंग माणिया अम्माली गुर सदगुर कै लग पैरे वढ़हंस महला तीजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सच्ची बाणी सच धुन

अमृतसर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मने लागा, दुख डेरा ठाया, सुख मन में आय बसया, जाम तय फुरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया, ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप मनावना, जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रूआवना, जो दे सहना मने कहना आख ना ही वावना, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, सब उपाय ने आप आपे नदर करे।

कौड़ा कोई ना मांगे, मीठा सा मांगे, सब कोई मीठा मांग देखे, खसम भावे सो करे, किस पुन दान अनेक करनी, नाम तुल ना समसरे, नानका जिन नाम मिले, कर्म हुआ तुर कदे, सब उपाय जिने आप, आपे नदर करे, वढ़ांस महला पहला, करो दया, तेरा नाम खाना, सब उपाय गे

निरकर अवस्था पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी पेर रलिया लाजो गुण बाला आंदना कंत सवारी हर वर सुहागो मस्तक भागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामन हारंग राती जा चले सदगुर पाए वढ़ांस महला तीजा गुरमुख सवा पार परा जिस

गुण संग्रह अवगुण विकण आपे आप शाण गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे सदरस तीजे नानक घर की भगत निराली गुरमुख विरले कीजे गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने कर अंदर रस पुंच तू लाहा लय परथाए राम लाहा परथाए घर मन नमसाए।

बीज मन अंदर सत्य शब्द सुखाए हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमती मन कर वसया सत्य शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो सत बैरागो ताचरते विचारी ना बिना सब जग बौराना सब देखो में मारी साचे शब्द लाग मत उपजे गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पो पंजन हर आवे मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्या ई राम गुरमती हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम हुक्म मिलाई सह समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच सवारण हारा पाओ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहया सुमाई वढ़ांस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो अपने कर तू सुख वस ओए न सके जम काल जियो काल जाल जम जोए न सके साचे शब्द लिवलाए सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रखाए दूजे पाए परम विभूति मन मुखमोही जम काल कहे नानक सुन मन मेरे तू सदा सच समाल मन मेरे अंत तेरे निधान गए बाहर वस्त ना पाल जो पावे सो पूछ तू गुरमुख नदर निहाल गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर घर नाम सिखाई मनमुख अंदले ज्ञान विगुणे दूजे पाए खुवाई बिन नावे को छूटे नाही साबादी जमकाल नानक अंतर तेरे निधान है तू बार वस्त ना पाल मन मेरे जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा सतगुरु सेवने अपना अंतर शब्द अपारा अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौन दपाई मन माया मोवे आपे दू संतापे दूजे पद गवाई होमे मार सच शब्द सुमाने सच रते अदकाई नानक मानस जन्म दुलंब है सदगुर बूझ बुझाई मन मेरे सदगुर सेवने अपना से जन्मड भागी राम जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया मत नेचल अत गूढ़ी गुरमुख सहजे नाम खाणिया एक कामन हितकारी माया मुहे प्यारी मनमुख सोए रहे अपागे नानक सहजे सेवे गुर अपना से पूरे वडभागे वढ़ांस महला तीजा रतन पदार्थ वणजी है सतगुर दिया बुझाई राम ला लाभ हर भगत है गुण में गुणी समाई राम गुण में गुणी समाए जिसे आप बुझाए ला भगत सह सारे बिन भगती सुख ना होई दूजे पद खोई गुरमत नाम आधार वखर नाम सदा लाभ है जिसनु एत वापार लाए रतन पदार्थ वणजी है जा सतगुर दे बुझाए माया मोह सब दुख है खोटा यो वापार राम कूड़ बोल बिकामणी बहु वदे विकारा राम बहु वदे विकारा सहसा यो संसार बिन नावे पद खोई पढ़ पढ़ पंडित वाद वकाने बिन बूझे सुख ना होई आमन जाना कदे ना चूके माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा यो वापारा खोटे खरे

आपे बगसे सोई गुरप्रसादी आप गवाई है नानक नाम पद पाई आप करे किसे आखिए होर करना किशु ना जाई वढ़ांस मोहल्ला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा व्यापार आराम गुरमती हर नामण जिए अतमोल अफारा राम अतमोल अफारा सच व्यापार सच व्यापार लगे वड़भागी अंतर बार भगती राते सच नाम लिव लागी नदर करे सोई सच पाए गुर के शब्द विचारा नानक नाम रते तिन ही सुख पाया सच के व्यापार होमी माया मैल है माया मैल भरी जय राम गुरमती मन निर्मला रसना हरस पीजे राम रसना हरस पीजे अंतर पीजे साज शब्द विचारी अंतर खूटा अमृत भरिया शब्द काड़ पिए पनेगारी जिस नदर करे सोई सच लागे रसना राम रवीजे नानक नाम रते से निर्मल होर हमे मैल पहीजे पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पे करे पुकारा राम माया मोह अंतर मल लागे।

गुण छोड़ बिखल दिया अब गुण का बनजारो सदड़े आए तिना जानिया हुसते करतारो नारी पुरख विछुनिया विछड़िया मिलन हारो रूप ना जाने सोनिए हुगबदी सिरकारो बालक बिरद ना जाननी तोड़न खेत प्यारो नाउदर ठाके हुगम सच्चे हंस गया गैनारे सातन छुट्टी मुट्ठी झूठ विदनिया मितगड़ा अंगरड़े बारे सुरतमुई मरमाइये मैरुनी दरबारे रोवो कंत मिहे लियो सच्चे के गुण सारे जाल माल जानी ना भालिया कपड़ पट अंबारे वाजे वजे सच्ची बाणिया पंच मुए मन मारे जानी विछुनड़े मेरा मरण भया त्रिग जीवन संसारे जीवत मरे सो जानिए तेरे सचड़े खेत प्यारे तुसी रोवो रोवन आई हो झूठ मुठी संसारे हो मुठड़ी तंदे तामणिया तेरे छोड़ी विदन कार कर कर कंत महेलिया रूड़े गेत प्यारे मैं पिर सच सालाना हो रैसेड़ी ना पतारे गुरमिलिया वेस पलटिया सातन सासी गारो आवो मिलो सहेली हो सिमरो सिरजन हारो बैयर नाम सुहागनी सच सुवार नहारो गावो गीत ना बिरहड़ा नानक ब्रह्म विचारो वढ़ांस महला पहला जिन जग सिरज समाया सो साहेब कुदरत जानो वा सचड़ा दूर ना पालिए कड़ कड़ शब्द पछाणो वा सच शब्द पछाणो दूर ना जानो जिन ए रचना राची नाम ते आए तासु पाए बिन नावे पिड़काची जिन थापी बिद जाने सोई या को कहे वखाणो जिन जग था बताया जालो सो साहेब परवाणो बाबा आया गए उठ चलना हर पंदे गए संसारो वा सिर सिर सचड़े लिखे।

अंतर सहज समाधि तिर रहया पर पूरे वेख हदूरे रंग माने सहज सुपाए जिन्नी अपना कंत पछाणिया हों तिन पूछो संता जाए।

तेत पै दे पग खिस तेर रंग राता सो सच्चा चोला तेत पै दे तिखा निवारे प्रा मेरा साहिब सबदू ऊचा है क्यों मिला प्रीतम प्यारे मैं प्रभ सच पछाणिया होर फूली अवगण आरे मैं सदा रावे तेरे अपना सचड़े शब्द विचारे।

बिन सतगुर परम पुलाणिया, क्या मोह दिसन आगे जाए, क्या देन मोह जाए, अवगुण पछताए, दुखो दुख कमाए, नाम रतिया से रंग चलूला, पिरके अंक समाए, ते जेवड़ अवर ना सूझ किसे आगे कही है जाए, तो सच्चा सच सलाहिए, जे सतगुर दे बुझाए, जिन्नी सचड़ा सच सलाया, हाँ तिन लागो पाए, सीजन सच्चे निर्मले, तिन मिलिया मल सब जाए, तिन मिलिया मल सब जाए, सच्चे सरनाए, सच्चे सहज सुपाए, नाम निरंजन अगम अगोचर, सतगुर दिया बुझाए, अन दिन भगत करे रंग राते, नानक सच समाए, जिन्नी सचड़ा सच ते आया, हाँ तिन के लागो पाए।

से उबरे सटे सिउं लेवलाए पौड़ी तित जाए बहो सत संगति जिथे हर का हर नाम बलोइए है जे ही हर नाम लेहो हर तत् न खोइए नित जपेओ हर हर दिन सुरात हर दरगह टोइए सो पाए पूरा सदगुरु जिस तुर मस्तक लिलाट लिखोइए।

ना जानई अज्ञानी अंध अंधार रतन गुरु का शब्द है बूझे बूझणहार मूर्ख आप गणाए दे मर जमे हुए खुवार नानक रतना सो लहे जिस गुरमुख लगे प्यार सदा सदा नाम उचरै

ब्राह्मण घर यो मनुआसदा सुख वस जी करे व्यापार अंतर गुर ज्ञान हरतन है मुक्त करा मन हारा नानक जिसनु नदर करे सो पाए तो होवे दर्श प्यारा पौड़ी तन तन सो गुरसिख कहिए तो सतगुर चरणी जाए पया तन तन सो गुरसिख कहिए जे हर नामा मुख राम कहया तन तन सो गुरसिख कहिए जिस घर नाम सुने मन अंद पया तन तन सो गुरसिख कहिए जिन सतगुर सेवा कर घर नाम लया तिल गुरसिख कौ फाउ सदा नमस्कारी जो गुर कै फाणे गुरसिख चलिया सलोक महला तीजा मन हड़के ने न पायो सब थके कर्म कमाए मन हड़के कर परम दे दुख पाया दूजे पाए रिद सिद्ध सा मोह नाम नवस्ते मन आए गुरसेवा ते मन निर्मल होवे अज्ञान अंधेरा जाए नाम रतन हर प्रगट होआ नानक।

प्रसन्न कोई न किसी जेह अंडज जेरज उत्कुज सेतज तेरे की तेजनता। एक पुरब मैं तेरा देखिया तू सबना महेरवंता तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया मैं मूर्ख किस दीजै परमत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजै। सोरठ महला पहला हौ पापी पतत परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी अमृत चाख।

अहिलस प्रभाते हरसना जाप मनरे तुम साचे हम तुम ही राचे शब्द भेद फुन साचे अहिलस नाम रते से सूचे मर जन में से काचे अवर ना दिसे किस सालाही किसे स्त्रीक न कोई प्रमत नानक दासन दासा गुरमत जान्या सोई सोरठ महला पहला अलख अपार अगम अगोचर नाथ काल न कर्मा जात अजात अजोनी संपो नाथ पाओ न परमा साचे सचियार मिटो कुर्बान नाथ रूप वर्ण नहीं रेखिया साचे शब्द निशान रखाओ नाथ माद पिता सुध बंधव नाथ काम न नारी अकोल नरंजन अपर परंपर सगली ज्योत तुम्हारी कड़कड़ अंतर ब्रह्म लुकाया कड़कड़ ज्योत सबाई बजर कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय ताड़ी लाई जंत उपाय काल सिर जनता वस गत जुगत सुबाई सदगुर से पदार्थ पावे टूटे शब्द कमाई सूचे पांडे साच समावे विरले सूचा चारी तंते कौ परम तंत मिलाया नानक शरण तुम्हारी सोरठ महला पहला जो मीना बिन पानी है तू साकत मरे प्यास त्यों हर बिन मरिए रे मना जो बिरथा जावे सास मान रे राम नाम जस ले बिन गुर यो रस क्यों लहो गुर में ले हर दे रहाओ संत जिना मिल संगति गुरमुख तीर्थ होए हर सर तीर्थ मजना गुर दर्श प्राप्त होए ज्यो जोगी जत बारा तप नाही सत संतोख त्यों नामे बिन दिहोरी जा मारे अंतर दोख साकत प्रेम न पाई है हर पाई गे सदगुर पाए सुख दुख दाता गुर मिले कहो नानक सिफत सुमाए।

क्रोध अहंकारा। सदा हजूर कविया सब ठाई, हृदय नाम अपारा। जो जुग बाणी शब्द पछाणी, नाओ मीठा मने प्यारा। सदगुर सेव जे नाम पछाता, सफल जन्म जग आया। हार चाख सदा मन तृप्तिया, गुण गावे गुणी अगाया। कमल प्रगा सदा रंग राता, अनखा शब्द बजाया। तन मन निर्मल निर्मल बाणी, सच्चे सच समाया। राम नाम की गत कोई न बूझे, गुरमत हृदय सुमाई। गुरमुख होवे सो मग पछाणे, हर रस रसन रसाई। जब तब संजम सब गुर ते होवे, हृदय नाम वसाई। नानक नाम संभाले से जन सोहन, दर साचे पद पाई। सोरठ महला तीजा दो तुके, सतगुर मिले उल्टी पई भाई। जीव

संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सो वडभागी, जिसनु आप मिलाए। हारस पीजन सदा त्रिवतासे, विचो आप गवाए। यो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मगना पाए। नानक सतगुर मिले ता

सब जग मछली हर आपे, आप पुल न पुली प्यारा, अवर न दूजा जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, तुने आव जाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तवता पे, आपे सदगुर आप है चेला, उपदेश करे प्रभ आपे, आपे नाउज पाएंदा प्यारा, आपे ही जप जापे, आपे अमृत आप है प्यारा, आपे ही रस आपे, आपे आप सलांदा प्यारा, जन नानक हर स्थापे, सोरठ महला चौथा, आपे कंडा आप तराजी, प्रभ आपे तोल तुलाया, आपे सौ आपे वणजारा, आपे वणज कराया, आपे धरती साजियन प्यारे, पिछे टंक चढ़ाया, मेरे मन हर घर त्याए सुख पाया, हर घर नाम निधान।

अनेक गुण पूर्ण जन की केत की उपमा कही है। अगमय गोत्र सद अबनासी शरण संतन की लई है, निर्गुण नीज अनाद अपराधी और संतन की आही, बूढ़ तमोग्रे अंध कूप मह नानक लेहो निवाही। सोरठ महला पंजवां कर पहला, जा के हृदय वसया तू करते ताकि तैं आस पुजाई, दास अपने को तू विसरे नाही चरण तूर मन पाई, तेरी अकथ कथा कथन ना जाई, गुण निधान सुखदाते स्वामी सबते ऊच बढ़ाई। रखाओ सो सो कर्म करत है प्राणी जैसी तुम लिख पाई, सेवक को तुम सेवा दीनी दर्शन देख अघाई, सर्व निरंतर तुम्हें सुमाने जा को तुधे आप बुझाई, गुर प्रसाद मिट्यू अज्ञाना प्रगट पय सवठाई, सोई ज्ञानी सोई ध्यानी सोई पुरख सुपाई, कहो नानक जिस पय दयाला ताको मन ते बिसर न जाई। सोरठ महला पंजवां, सगल समग्री मोए व्यापी कब ऊचे कब नीचे, शुद्ध न होइगे काहू जतना ओड़क को ना पहुँचे, मेरे मान साध शरण छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरना रही, फिर आवत बारो बारा। रगाओ वो जो परम पुलावा कहियत तिन में उर्जो सगल संसारा, पूर्ण भगत पुरख स्वामी का सर्व थोग ते न्यारा, निंदो नाही काहू बात यो खजम का किया, जाको कृपा करी प्रा मेर है मिल सा संत नौ लिया, पार ब्रह्म परमेश्वर सदगुर सबना करत उधारा, कौ नानक गुर बिन नहीं तरिए त्यो पूर्ण तत् विचारा। सोरठ महला पंजवा, खोजत खोजत खोज बिचार्यो राम नाम ता सारा, किलभ काटे निमख आराध्या गुरमुख पार्यो तारा, हर रस पीवो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावे, साधु अमृत बानी। रगाओ मुगत भुगत जुगत सज पाई गे सर्व सुखां का दाता, अपने दास को भगत दान देवे पूर्ण पुरख विधाता, श्रमणी सुनिए रसना गाइये हृदय त्याइये सोई, करण कारण समरथ स्वामी जाते बिरथा न कोई, वडे भाग रतन जन्म पाया करो कृपा कृपाला, सा संग नान गुण गावे सिमरे सदा गोपाला। सोरठ महला पंजवा, कर स्नान सिमर प्रव्यापना मन तन पय अरोगा, कोट विघ्न लाथे प्रसरणा प्रगटे पले संयोगा, प्रबाणी शब्द सुपाखिया गावो सुनो प्रो निदपाई, गुरपूरे तू राखिया रहाओ साचा साहेब अमित वडाई, भगत वशल दयाला संतां की पैज रखदा आया, आद बिरद प्रतपाला हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो, सर्व वेला मुख पावो जरा मरा ताप सब नाठा, गुण गोविंद नित गावो। सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बन आई, प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवा, कार दूजा चौपदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद, एक पिता एक के हम बारिक तू मेरा गुरहाई, सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी हर दर्शन दियो दिखाई, सुन मीता तूरी कौ बल जाई यो मन तेरा पाई, रहाओ पा मलोवा मल मल तोवा यो मन ताए को दिशा, सुन मीता हो तेरी शरणाई आया प्रा मिलो देव उपदेशा, माना कीजे शरण परिजे करे सो पला मनाई है, सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजे क्यों दर्शन हर जियो पाई है, पयो अनुग्रह प्रसाद संतन कर।

तू दाता मांगन को सगली दान दे प्रापन खिर मैं अवर खिने मैं अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गैर गंभीरो ऊंचो अगम अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अंध पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन।

सुखदाता गुर पूरे दिया उपदेशा तुम्हें संग पराता रहाओ ताम क्रोध लोभ मोह अवमहाना ता मैं सुख नहीं पाई है हो रेन तू सगल की मेरे मान तो अनद मंगल सुख पाई है काल न पाने अंतर विद जान ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम ओ मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा ना वर्तन ना मुवा लेवा नाम नानक प्राण अधारा सोरठ महला पंजवा मृतक कौ पायो तन सासा विशिरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पै स्रोते हर नामा मोह गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकि कीमत कहन न जाई हरहाओ दू सो का टायो डेरा अंध मंगल बिसरामा मन बांझत फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा ईहा सुख आगे मुख उजल मिट गए आवन जाने निरपो पै हृदय ना मसिया अपने सदगुर कै मन पाने उठत बैठत हर गुण गावे।

गुण गावत आराध नाम हर, आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत, संगत साध प्यारी सब बलिहार जाओ प्रभ अपने, जिन पूर्ण पैज सवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उधरे, जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नांग प्रभ अपना, हंद से ती कर आया सोरठ महला पंजवा, प्रभ की सारण सगल पैला थे दो बिन से सुख पाया, दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी।